ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि तदानुसार, दिनांक 16 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर इस समय सवेरे के ठीक 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन

0: फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर लीजिए। अब सुनिए विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित हमारा अगला कार्यक्रम।
2: दिन रात लगातार ले सकते हैं और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में।
3: ये है विविध भारती
2: वंदनवार।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये था चिंतन, अब भक्ति संकीर्तन।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे बोले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम ही राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विकी कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक शकुंतला। 4 बजे के अंतर्गत आज शाम 4 बजे जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। 8:15 पर और दिन में 2:15 पर दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की जा रही है। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण दीनी चदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागी लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आज की इस कड़ी में अनूप जी, कबीर की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए किस रचना, या यूं कहें कि जो हमें पसंद है, आज उसकी चर्चा करें। चदरिया जीनी रे जीनी।
2: चदरिया जीनी रे जीनी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेके आगे। ये भजन यूं तो राग देश पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है, और वो रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन नहीं थे वो इस ओर आकर्षित हो गए और शास्त्रीय संगीत सुनने लगे, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों के कराते हैं उससे उनका जी नहीं भरता और वो कहते हैं इसको और गाइए। इस तरह से शास्त्रीय संगीत की ओर लोग आकर्षित हुए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज रंगरेज है गुरु, गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: वाह, बहुत सुंदर। बहुत बार सुना है ये भजन, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की छटा देखने को मिली। आप अनूप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुंचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं है। राग का मतलब है कि किसी चीज को और सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो वो एक राग बन जाती है। यूं ही लोगों को डरा दिया गया है कि ये क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो, तो इसका आनंद दुगना हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए, तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं, उस गाने को आप ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, अगर आपको पता लग जाए कि ये किस राग में है। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ हो रहा होगा, और वैसे भी संगीत सरिता एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए। कलम और कागज लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं, और हम भी कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी लागी लगन, भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के 7:11:40 हो चुके हैं और ये गाना गूंज रहा है। ये मासूम सी आवाज अमित गांगुली की, फिल्म का नाम दूर कराही, गीत ए इरशाद, संगीत किशोर कुमार।

अमित कुमार की आवाज थी दूर का राही फिल्म का ये गाना ए इरशाद का लिखा हुआ था और संगीत किशोर कुमार का था। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, और अब हम एक गीत सुनवा रहे हैं जो आपको एक दूसरे गीत की याद दिलाएगा। बनारसी ठग फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, संगीत इकबाल कुरैशी का है। दिलचस्प बात यह है कि ये धुन किसी और ही गाने की याद भी दिलाती है।

बनारसी ठग फिल्म का ये गाना किसी और ही गाने की याद दिलाता है और इसे हम एक पहेली की तरह ही छोड़ देते हैं। आपको जरूर वो गाना याद आ गया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशोर कुमार की आवाज अब गूंज रही है, फिल्म का नाम मुनीम जी।

0: खाने को।
1: मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना है ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। गीत और आई थी आवाज मजरू सुल्तानपुरी ओ पी नैयर।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये रास्ते ही प्यार की फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत रवि का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में संजोग फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त

0: अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रति

0: वर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना

0: गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्स ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है, सरकार ने इस दिशा में कदम

0: बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत आप सुन रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और SB बाला सुब्रमण्यम ने, बोल हैं आनंद बख्शी के।

आइए अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और दिलराज कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता, बोल हैं गुलशन बावरा के और संगीत है आरडी बर्मन का। आवाज़ें हैं आशा भोसले और दिलराज कौर की।

लीजिए फिल्म संगीत के अंत में सुनते हैं कर्ज फिल्म का ये गीत। ये गीत गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम। नमस्कार।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। आज 16 मई सन 2026 के अंक के साथ हम हाजिर हैं। स्वीकार कीजिए गुलनाज खान और
1: कविता का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और चूंकि हम आपके दोस्त हैं तो हवाओं ने रंगत बदल ली है, फिजाओं ने भी अपनी आदत बदल ली है, तो सबको मालूम है कि बार की हवा है कातिल, तो यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। तपिश इतनी बढ़ गई है, खुद को घर में ही रखना बेहतर है। कहते भी है ना कि दिल बहलाने के लिए घर में वजह काफी है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है।
0: जी, दोस्ती घर है तो दोस्ती जताने की जरूरत क्या है।
1: दोस्ती ना सही, दस्तूर तो निभाना होता है।
0: जी हाँ, दस्तूर को निभाते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, साल 2026 का 136वां अंक लेकर हम हाजिर हैं। पांचवा महीना है, तीसरा शनिवार है, दो सूत्रधार हैं और एक अंक है। नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार के इस अंक में बहुत सारे विषय आप तक पहुँचाएं, बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करें, उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं आज की नमस्कार टीम से।
1: तो ट्रांसमिशन से हमें साथ मिल रहा है फारूख अहमद शेख और चंद्राराम पटेल का।
0: तकनीकी सहयोग के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद सुनील जयपाल।
1: प्राइमरी चैनल पर अनाउंसर ऑन ड्यूटी शैला महेश्वरी।

0: कंसोल पर एफएम चैनल पर हैं साक्षी परिहार।
1: और हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने।
0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के प्रस्तुत करता है संजय व्यास। पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
1: कविता।
0: नया दिन उजले सवेरे हाजिर है लेकर गाने नए नवेले।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मैं बहुत सारे सपने लेकर जागता है, कुछ सपने मुकम्मल हो जाते हैं तो कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं और फिर जिंदगी का सफर चलता रहता है। कविता जी, ऐसा है कि जब भी हम मिलते हैं, मुलाकात होती है हमारी, तो हम अक्सर उजले सवेरे की बात करते हैं, स्याह रात की बात करते हैं, मसरत भरे दिनों की बात करते हैं, मुश्किल और गमगीन रातों की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिन और रात, मसरत और गम के

0: बीच में वो लम्हात भी आते हैं जो इन सब के गवाह बनते हैं, और वो लम्हे हर उम्र में हमारे साथ रहते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिसके मायने जिंदगी में हमेशा बदलते रहते हैं,
1: उम्र दर उम्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं,
0: चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है आज इस मंच पर, तो हम उन्हीं दिनों को याद करते हैं और कुछ
1: तो
0: बातें,
1: एक एक शब्द को चुनते हैं।
0: हाँ,
1: है ना,
0: ऐसा करते
1: कोई
0: हैं।
1: एक शब्द चुनते हैं और उस शब्द के मायने जिंदगी में किस तरह बदलते जाते हैं उस पर बात करते हैं।
0: जी,
1: तो पहले
0: बिल्कुल।
1: शब्द चुनिए आप।
0: देखिए, जिंदगी की जब बात हुई है तो जिंदगी खूबसूरत हो कौन नहीं चाहता,
1: बेशक।
0: तो चलिए सुंदरता से ही शुरू करते हैं। सुबह सुबह का माहौल है, बहुत ही खूबसूरत नजारा हमारे श्रोताओं के भी सामने है
1: जी।
0: तो खूबसूरत शब्द को लेते हैं।
1: हमारे बचपन में खूबसूरती की परिभाषा है हमारी माँ।
0: हाँ,
1: क्योंकि उससे बेहतर, उससे खूबसूरत कोई चेहरा नहीं
0: जी। और देखिए, बचपन में हर बच्चे के चेहरे पर जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही नैसर्गिक होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये कुदरत की देन है। बच्चा बगैर किसी मेकअप के अच्छा लगता है,
1: बहुत सुंदर,
0: बड़ी
1: उसकी मुस्कान बड़ी निश्चल
0: हाँ
1: लगती
0: जी
1: है।
0: ये शब्द हम बाद में ले लेंगे अभी खूबसूरती से शुरू करते हैं, उसके बाद देखिए आगे
1: जी,
0: आगे देखिए होता है क्या
1: जी।
0: तो ये खूबसूरती जो है वो बड़ी ही नैसर्गिक होती है। जवानी में जब यौवन अपने उछाल पर होता है तो फिर चेहरे का नूर देखते ही बनता है।
1: बिल्कुल, और वहीं जैसे उम्र ढलने लगती है तो बिना दस्तक दिए वो एक सलवट है जिसे कोई नहीं चाहता, वो चेहरे पर अंकित होना शुरू हो जाती है। और वहां लगता है कि हमने जिंदगी के कितने अनुभवों को जिया, और
0: जी
1: जब भी शीशे में देखते हैं तो अपना आंकलन जरूर करते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक आ गए हैं, और अभी भी जिंदगी में क्या बाकी है। वहां पर ठहर कर सोचने की जरूरत रहती है, और सोचते भी हैं हम
0: बिल्कुल।
1: लोग,
0: और उन झुरियों में भी अनुभव का एक बहुत बड़ा जखीरा होता है,
1: और वो भी खूबसूरती की मिसाल
0: उसमें
1: बनता
0: भी
1: है।
0: खूबसूरती है। देखिए, कभी भी वक्त मिले तो किसी बुजुर्ग को आप ठहर के जरा देखिए, उसमें भी फिर वही बात, बगैर मेकअप के इतना खूबसूरत लगता है वो चेहरा, जिसमें जो नूर होता है वो
1: जी,
0: उनके उस अनुभव का नूर होता है, जो
1: बेशक,
0: जिंदगी उन्होंने जी होती है उसकी एक सुकून की कहना चाहिए कि झुर्रियाँ होती हैं वो
1: बिल्कुल।
0: तो
1: हाँ,
0: हम इसमें भी
1: और हम भी
0: सुकून
1: जब
0: ढूंढ रहे
1: उनसे
0: हैं।
1: मिलते हैं तो उनकी झुरियों में उनके जीवन के अनुभवों को तलाशते हैं, है
0: बिल्कुल ना,
1: ना।
0: बड़ा अच्छा लगता है बुजुर्गों से
1: बहुत अच्छा
0: मिलकर।
1: लगता है, और वो शक्ल भी बेहद खूबसूरत लगती है।
0: देखिए, वैसे ही एक बच्चे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक जवान व्यक्ति से मिलकर दिल में बहुत सारी बातें आती है कि ये
1: जी
0: हमारे साथ अच्छा करने वाला है या नहीं करने वाला, इसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
1: जी जी
0: लेकिन एक बुजुर्ग से मिलते हैं तो फिर वही बचपन वाली बात कि अच्छा
1: जी
0: लगता है।
1: हाँ,
0: चलिए, अच्छा लगता
1: अच्छा
0: रहे,
1: लगता रहे
0: और
1: जी, इसी सफर में भी हम आगे बढ़ते रहें। ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बदल गए हैं जिंदगी के मायने,
1: है ना जी। हाँ, और उसमें संवारने की भी बात है
0: जी। और संवारने के लिए हम अगर बात करें तो बचपन में शब्दों के जो मायने कम होते हैं,
1: हम शब्द समझ ही नहीं आते
0: हम
1: थे,
0: हम अपनी मुस्कान से सारे ही काम करवा लेते हैं, है ना। मतलब जरा सा मुस्कुरा दिया और सामने वाले जो है वो खुद ही बिच जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है, शब्द समझ में आना शुरू होते हैं, तो वहां से हम सीख लेते हैं कि कैसे शब्दों का खेल जो है जिंदगी में काम आता है।
1: बिल्कुल, देखिए बचपन में माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, तुतलाते हुए हम इस दुनिया के कुछ शब्दों को सीखते हैं। जवानी में जब घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया हमें बहुत सारे शब्द और शब्दों के मायने और क्या कहना चाहिए शब्दकोश हमें सिखा देती है। और उसके बाद जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाता है, हमारे शब्दकोश में बहुत सारे शब्द इकट्ठे होते चले जाते हैं।
0: फिर भी हम उसका इस्तेमाल कम करना,
1: उसके बाद देखिए जब बुजुर्ग हो जाते हैं, वही बचपन वाली बात आ जाती है कि अटक कर एक शब्द बचपन में बोला करते थे, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो एक शब्द में कितना भार होता है। बुजुर्ग एक शब्द बोल दे तो पूरा उसका जो मतलब है वो उसमें पूरी जिंदगी समाई होती है
0: जी। तो इसमें उच्चारण का महत्व है।
1: हाँ, वही दांत बीच में आ जाते हैं। बचपन में दांत नहीं होते तो उच्चारण वैसा नहीं निकलता, उसके बाद ऊपर वाले की इतनी मेहर होती है कि 32 दांत 30 दांत इंसान को मिल जाते हैं, तो बड़ा चबा चबा के शब्दों को बोलता है। और फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं
0: फिर वही दांत साथ छोड़ देते हैं।
1: उस पोपले मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जरा सुनने में जरूर मुश्किल होता है लेकिन
0: समझना बड़ा भारी काम हो जाता है,
1: भारी काम होता है।
0: और जो समझ जाए उसकी जिंदगी
1: संवर जाती है जी।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS वचरण जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिस तरह से फूलों पर नमी होती है, बस कुछ उसी तरह से बचपन में मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर सजी होती है। बचपन की जो मुस्कुराहट होती है ना कविता जी, वो बड़ी ही निश्चल सी होती है, सहज और सरल होती है। और फिर जवानी में मुस्कुरा कर देखना है तो उसके माने बदल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: एक और बात नोटिस में आती है कि बचपन में मुस्कुराने के लिए बहुत ज्यादा वजह नहीं ढूंढनी पड़ती, है ना। जो चेहरा अच्छा लगता है, प्यार देता है, पसंद आता है, मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। और बेवजह नहीं मुस्कुराता बच्चा कभी भी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जवानी में हम कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बेवजह नापसंद चेहरों के सामने भी मुस्कुराने लगते हैं।
0: जी हाँ, धीरे धीरे हम एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं, वो मुखौटा जो मुस्कुराता रहता है जहाँ ज़रूरत होती है, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर एक नज़र को तिरछी करके भी देखने की अदा आ जाती है जवानी
1: जी,
0: में।
1: जी।
0: वो है ना कि जवानी में नज़र कभी झुकती है।

0: है, कभी उठती है, कभी तिरछी
1: कभी
0: होती है,
1: तीखी होती है,
0: तो नजर के माने बदल जाते हैं, मुस्कुराहट के भी माने बदल जाते हैं, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो इतनी समझ में आ जाती है कि सामने वाला मुस्कुरा कर देख रहा है या देख कर मुस्कुरा रहा है। तो इतना तो पता चल जाता है कि भाई तेरी मुस्कुराहट में क्या है।
1: छुपा क्या है, उसके पीछे की राज क्या है ना। लेकिन बुजुर्ग जब मुस्कुराते हैं ना,
0: बड़े प्यारे लगते
1: बड़े ही
0: हैं।
1: खूबसूरत लगते हैं ना,
0: जी
1: और उनके जो मुस्कुराहट होती है वो कई सारी बातों को याद दिला देती है हमारी अपनी जिंदगी में। कहते हैं ना कि एक पल किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ, पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाती है ना
0: जी।
1: और जब चरण छूते हैं वो मुस्कुराकर कहते हैं जीते रहिए, खुश रहिए, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां सच में हमारी झोली में आ गई।
0: अच्छा, जो परेशानियां हम लेकर किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं कि अच्छा मैं कोई परेशानी थी क्या, क्योंकि हमारे सामने हमारा मुस्तकबिल होता है। तो हमें लगता है कि इस बुजुर्ग ने भी वो सारी परेशानियां झेली हैं और उस मुकाम से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और कितने मुस्कुरा रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: और उनमें एक और क्वालिटी होती है, आप बोले ना बोले, आप मुस्कुराए ना मुस्कुराए, आपके भीतर क्या चल रहा है आपकी धड़कनें तक वो सुन लेने की ताकत रखते हैं।
0: बिल्कुल। और कहते भी है ना कि अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं, बच्चे के गाल जो हैं वो गुलाबी हैं और उस पर मुस्कुराहट सजी है, तो ये मानकर चलिए कि उस बच्चे को बहुत मोहब्बत मिलती है। और फिर उसी तरीके से जब बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो ये भी समझ में आ जाता है कि उनके घर में सब कुछ ठीक है,
1: ठीक है,
0: उनकी सेवा भी अच्छे से हो रही
1: जी,
0: है
1: जी।
0: क्योंकि बहुत कुछ बगैर बोले भी
1: कह
0: समझ आ
1: है
0: जाता
1: इंसान,
0: है।
1: बिल्कुल।

0: भाई साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं और फिर कुछ बातें अधूरी भी रह जाती हैं और अगली मुलाकात के लिए हम लोग मिलने की उम्मीद करते हैं। बहरहाल श्रोताओं, हम कार्यक्रम के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर हम एक न्यूज़ ब्रेक के लिए रुकते हैं। कार्यक्रम में 9:10 पर फिर हाजिर होते हैं, एक न्यूज़ ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।
1: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास

0: कहीं भी पानी जमा न होने दे, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
1: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर

0: 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वयं गणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और इस समय आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
2: कविता। और दोस्तों, बड़ा गौरव महसूस होता है जब भी इतिहास के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज वो घटनाएं जो आज भी कहीं ना कहीं हमारा आदर्श स्थापित करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है खास आज के दिन इतिहास में।
1: श्रोताओं, 1881 में बर्लिन के पास लिस्टर फेले में बिजली से चलने वाली विश्व की पहली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। आज के दिन इसे जर्मन आविष्कारक वर्नर वॉन सीमेंस ने विकसित किया था।
2: दोस्तों, आज ही के दिन 1911 में कोलकाता में बने तल्लाह वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ था। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक कहा गया। इसका उद्घाटन आज ही के दिन हुआ और कहा जाता है आज भी ये वहां जलापूर्ति करता है।
1: साल 1929, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। श्रोताओं, इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिभावान कलाकारों को सम्मान देना था। कैलिफोर्निया में तकरीबन 250 लोगों की उपस्थिति में इस समारोह का आयोजन हुआ था। डायरेक्टर विलियम वेलमैन की फिल्म विंग्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। इस समारोह में कुल 12 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे। शुरुआत में इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट के नाम से जाना जाता था। 1939 में इसका नाम बदलकर ऑस्कर कर दिया। और आज फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हर कलाकार के लिए ऑस्कर जीतना एक सपने जैसा है और एक सपना सभी का होता है ऑस्कर का।

0: 16 मई का दिन था और 1913 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने की सफलता प्राप्त हुई थी।
1: श्रोता 1996 में आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

0: दोस्तों, आज ही का वो दिन था 1960 में, आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी।
1: उन्नीस सौ 91 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी थी आज के दिन।

0: और दोस्तों आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था।
1: निन्यानवे में दक्षिण का सन 2002 में होने वाला शिखर सम्मेलन थिम्पू में कराए जाने की घोषणा की गई थी आज ही के दिन। श्रोताओं, दक्षिण दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अंग्रेजी में इसे सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है।
0: और दोस्तों 2006 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क एंजेलिस अपने पहले पर्वतारोही बने जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया।
1: सन 2010 में अजलन शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में पिछले विजेता भारत और दक्षिण कोरिया को बारिश के कारण मैच ना खेले जाने के कारण संयुक्त विजेता घोषित किया गया था आज के दिन। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज में आयोजित 2020 विश्व कप के निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 147 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था और पहली बार विश्व विजेता बना था सन 2010 में आज ही के दिन।

0: सवेरे होते ही जिंदगी की शुरुआत होती है ऐसा लग जाता है, और ये एक मूर्छा है जो रात में हमारे साथ जुड़ी रहती है और उससे हम जाग उठते हैं। और अगर सोच कर देखें तो स्वास्थ्य हो, वनस्पति हो, विज्ञान हो, अगर सूरज नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, तो शायद कुछ भी नहीं।
1: वो कहते भी है ना कि वो पत्ते पीले ही रह गए जिन्हें छांव में रखा गया, उन्हें रोशनी, उन्हें धूप सहन करनी होगी जिन्हें बादलों की तलाश है। रोशनी जीवन में आगे बढ़ने का संकेत भी देती है। अगर आप इसे दिल से महसूस करना चाहते हैं तो पहाड़ों में जब आप घूमने जाते हैं और वहाँ पर आपको एक डर सा लगता है, अंधेरा होता है, गाड़ी चला रहे हैं आप, कहीं चट्टान है, कहीं खाई है, न जाने अगला मोड़ क्या हो, कुछ इस तरह के मनोभाव आपके दिल में रहते हैं, और ऐसे में कहीं एक गाँव में कुछ रोशनी नज़र आ जाती है, टिमटिमाते हुए बल्ब की रोशनी जो होती है वो आपको ऊर्जा देती है और
0: आत्मविश्वास को बढ़ा देती है।
1: बिल्कुल बढ़ाती है। तो रोशनी चाहे दीपक की हो, बल्ब की हो, सूरज की हो, या आशावान रहने के चंद शब्द भी रोशनी भरे हो,
0: ज्ञान की हो, बिल्कुल रोशनी जरूरी है,
1: बहुत माने रखती है। और उसी बात के मद्देनजर आज का दिन बहुत खास है। आज मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस।
0: ये दोस्तों हर साल 16 मई को ही मनाया जाता है और भौतिक विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा ये 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ भी है। लेजर इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज संचार, स्वास्थ्य सेवा और अन्य कई क्षेत्रों में समाज को क्रांतिकारी लाभ पहुंचा सकता है।
1: जी हाँ, ये दिन वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का आह्वान करता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को सम्मानित करने का भी अवसर है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि प्रकाश सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि ज्ञान, खोज और जीवन का प्रतीक भी है। प्रकाश हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, संचार हो, शिक्षा हो, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा। प्रकाश आधारित तकनीकें जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर और सोलर पैनल से हम तेज संचार, सर्जरी और स्वच्छ ऊर्जा में क्रांति ला सकते हैं। प्रकाश सिर्फ देखना नहीं सिखाता श्रोताओं, सोचने की रोशनी भी देता है। तो आइए इस दिन हम ये संकल्प लें कि हम प्रकाश की इस शक्ति का उपयोग ज्ञान, विज्ञान और विकास के लिए करेंगे। और अंधेरे से लड़ने के लिए तो एक किरण ही काफी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इस सूरत से आंख मिलाने का वक्त सबका अलग-अलग होता है सुबह सवेरे अगर नजर मिला ली तो मिला ली उसके बाद हमारे आपके बस में नहीं है सूरज से नजर मिलाना
1: फिर तो आप अगर सूरज से नजर मिलाएंगे तो फिर किसी और से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे
0: हां और अगर आप 8 बजे उठकर नजर मिलाना चाहते हैं तो जरा मुश्किल हो जाएगा लेकिन एक जगह ऐसी है हमारे ही देश में जहां पर सूरज बहुत जल्दी उगता है या कहना चाहिए कि सुबह सादिक जिसे आप कहते हैं अल सुबह यहां की अल सुबह होती है वहां पर सूरज अपने शबाब पर आ जाता है पूर्वोत्तर में जैसे जैसे चलते चले आते हैं ना आप
1: हां ये पहाड़ों पर है हाँ, ऐसा है
0: हर पहाड़ हर पहाड़ पर चढ़कर सूरज जल्दी दिखता है
1: जी हां वैसे सुनने में यही आता है कि पहाड़ों पे सुबह भी जल्दी होती है शाम भी जल्दी होती है जैसा अभी आपने कहा भी था कि पहाड़ों पर जब अंधेरा डराता है तो जाहिर सी बात है रोशनी भी बहुत लुभाती होगी
0: बहुत लुभाती और उस समय तो पहाड़ की जो बर्फ से ढकी चोटियां जो दिन में नजर नहीं आती उसकी खूबसूरती का तो आलम यह है कि सुबह-सुबह आप 4 बजे वहां पहुंच जाइए और उसके बाद जो चोटियां हैं उनके ऊपर हल्की-हल्की लाली जो नजर आती है ना जो अभी हमने गाना बजाया था तो लाली है सवेरे वाली उसका असल लुत्फ आपको तभी मिलता है
1: तो चलें
0: चलते हैं कहां चलें आज तो देखिए सिक्किम में चलते हैं क्योंकि वहां के लोग आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और अच्छी खासी हमारी आवभगत भी होने वाली है
1: बिल्कुल और कहां यह जाता है पढ़ा यह जाता है कि यह बहुत छोटा सा अंगूठे के आकार का भारत का एक बेहद अनमोल रत्न है सिक्किम और यह पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी राज्य है और आज ही के दिन 1975 को भारत का 22वां राज्य बना
0: जी हां श्रोताओं स्वतंत्रता से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र बौद्ध राजशाही था नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित प्रदेश था तिब्बत और भारत के बीच स्थित सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण राज्य था और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम ने भारत के साथ संरक्षित राज्य के रूप में एक विशेष समझौता किया था और फिर समय के साथ राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आया और सिक्किम की जनता ने लोकतांत्रिक शासन और भारत में शामिल होने की मांग की थी और जैसा कि अभी आपको बताया 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ था और उसके बाद आज ही के दिन 16 मई 1975 को भारतीय संसद ने एक संविधान संशोधन पारित कर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया था और यह भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था और इसके साथ ही वहां पर राजशाही का अंत हुआ था और भारतीय

0: संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर प्रजातंत्र का उदय हुआ था। श्रोताओं, आज का दिन न केवल राजनीतिक एकता का प्रतीक है, बल्कि सिक्किम की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक समृद्धि को सम्मानित करने का भी बहुत ही सुंदर अवसर है। और सिक्किम अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपका, देखिए अभी तो मई का महीना चल रहा है, छुट्टियां हैं आगे, तो सिक्किम का प्लान कर सकते हैं। सिक्किम के लोग आवभगत बहुत अच्छी करते हैं और उनको सिविक सेंस बहुत अच्छी है।
1: हाँ, वहाँ सांस्कृतिक एक अनूठा ताना बाना बनता है, क्योंकि नेपाली, भूटिया, लेप्चा कई तरह के समुदायों के मेल से ये बना हुआ है। और यहाँ की शांति, यहाँ की जैव विविधता और कंचनजंगा की चोटी देखना अगर आप चाहते हैं।
0: क्या बात है, गैंगटॉक भी देखिए आप, नाथुला दर्रा भी देखिए, यामथंग वैली देखिए, गुरु डोनमोर्ग झील भी आप जाएं, बेहद खूबसूरत है। और एक बात मैं बताऊं, बहुत शौक है मुझे घूमने का, जब जब घूमते हैं अलग अलग राज्य देखते हैं, शहर देखते हैं, लेकिन सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसी मुझे जगह नज़र आई है जहाँ पर सार्वजनिक, जो हम कचरा पात्र कहते हैं, जहाँ पर रखा होता है, वो इतना खूबसूरत होता है, चारों तरफ उसके गमले लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और वो जगह ऐसी नहीं लगती कि गंदगी आपको नज़र आए। बहुत ही साफ सुथरा, अच्छा सा शहर है, अच्छी जगह है, और देश का पहला पूर्व जैविक राज्य भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और हरित क्रांति के क्षेत्र में भी सिक्किम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, शांत हैं, और सुंदर पर्वतीय श्रृंखलाएं जो है ना, वो बाहें पसारे आपका इंतजार करती हैं।
1: तो
0: चले
1: चले

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: चला कि हम अपने शहर में हैं और जिधर देखें उधर
2: तपिश तपिश
1: तपिश और तपिश है, साथ ही कचरा नजर आता है। इसके लिए हमें कुछ करना होगा अपनी तरफ से।
2: बिल्कुल, वैसे ना दिन विशेष निर्धारित किए जाते हैं इसी तरह की सोच के साथ कि जन कल्याण हो, जनता उसमें जुड़े और उसकी उपलब्धि और उसकी उपयोगिता को समझे।
1: जी, एक दिन समझे और रोजाना उसे लागू करे, ये भी बहुत जरूरी है।
2: जी, लेकिन विलाद यहाँ हम बात करते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो हर साल आज ही के दिन डेंगू को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस।
1: जी हाँ,
2: तो ये जो डेंगू है ये इसकी दस्तक तकरीबन हर साल सुनाई पड़ जाती है, है ना। खास तौर पर जब बारिश का मौसम होता है तो इसका असर कई लोगों पर ज्यादा दिखता है। मानसून के बाद देश भर में डेंगू के कई मामले सामने आते हैं और हम सभी जानते हैं कि ये एक तरह का वायरस संक्रमण है और एक खतरनाक बीमारी भी है जो ब्लैक स्पॉटेड मच्छर को काटने से होती है।
1: जी, और देखिए बारिश का इंतज़ार तो थोड़ा लंबा हो जाता है, अभी भी आपको मलेरिया के बहुत सारे केसेस नज़र आ जाएंगे क्योंकि देखिए हम कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर का पानी अगर नहीं बदलते हैं या उसे पूरे टाइम हम बंद रखते हैं तो उसमें भी मच्छर पनपने लगते हैं। और फिर इन दिनों ना हम अंधेरा करके घर में रखते हैं, खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, पर्दे डाल कर रखते हैं, तो अंधेरापन जहाँ पर होता है वहाँ पर भी सीलन शुरू हो जाती है और मच्छरों के पनपने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा। और साल की थीम श्रोताओं जो आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस की खास तौर पर है वो है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल चेक क्लीन एंड कवर, यानी डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांचें, सफाई रखें और ढक कर रखें। क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं।
2: जी, और इस क्यों करना है ये भी बेहतर जानते हैं,
1: नहीं तो डेंगू हो जाएगा।
2: और ये जो डेंगू होता है तो ये शरीर की प्रतिरोधी तंत्र को प्रभावित करता है और ये काफी खतरनाक साबित हो जाता है। और सावधानी और सतर्कता की बात करें तो घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, और क्योंकि पानी जहाँ जमा होता है वहीं मच्छरों का आवास स्थल भी बनता है।
1: जी, सफाई रखे हो गया।
2: जी, और पानी अगर कहीं इकट्ठा हो भी रहा है या सीलन हो भी रही है तो वहाँ कैरोसिन या पेट्रोल के कुछ बूंदे डाल दें ताकि वहाँ मच्छर न पनपने पाए।
1: जी, और खाना जो है उसे ढक कर रखें। और बुखार अगर आता है आपको तो फिर जांचें जरूर करवाएं, अपने आप से दवाई लेने की कोशिश ना करें।
2: और कबाड़ और टायर जैसी चीजों को सहेज कर रखने की आदतों को बदल डालिए।
1: जी, कहते हैं ना कि माफ करिए आगे बढ़िए, तो जिस तरह से आप लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं तो ये भी बड़ी भूल है अपनी कि हम अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। बस माफ कीजिए, कबाड़ को घर से बाहर निकालिए,
2: साफ कीजिए। और जैसा कि गुलनाज ने कहा है, खिड़कियां रोशनदान को खोल कर रखिए, रोशनी को आने दीजिए ताकि ये जो समस्या है इसका पहला उपाय हो जाए।
1: जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप बीमार नहीं हैं तो फिर मुस्कुरा कर दूसरे की तरफ देखेंगे। और आज का दिन और एक खास बात है, आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, शांति से रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। श्रोताओं, हर साल 16 मई को मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2017 में घोषित किया गया था और पहली बार सन 2018 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य है लोगों में सहिष्णुता, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देना, साथ ही विविधता को सम्मान देना भी है, सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करना भी है और संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना भी है। और आज के इस दिन का थीम है संवाद, समावेशन और मेल मिलाप के माध्यम से विश्वास का निर्माण करना। कम से कम शब्दों में अगर हम कहें तो यही कि जियो और जीने दो।
2: और शांति किसे नहीं पसंद, किसको इसकी तलाश नहीं है, ये हम सभी जानते हैं।
1: देखिए, दो जने जब झगड़ा करते हैं तो तीसरा बीच में आकर ये कहता है शांत हो जाओ। सबसे पहले यही शब्द कहा जाता है, शांत हो जाओ।
2: जी,
1: तो बस शांत रहिए ना। आजकल तो वैसे भी मोबाइल हमारे हाथ में है तो कहाँ बात करते हैं। शब्दों से आजकल झगड़े ज्यादा होते हैं व्हाट्सएप पर, बाकी तो शांति ही रहती है। पर फिर भी कहीं किसी से अनबन है तो शांत भाव से आप उसे सुलझा सकते हैं।
2: और सुकून को सुनने की आदत डालते हैं तो ये आपके खुद के लिए बड़ी रोचक होती है क्योंकि सुकून भी बहुत कुछ कहता है।
1: बिल्कुल कहता है, प्यार, सुकून, शांति, आपसी मेल मिलाप, कड़ी दर कड़ी जुड़ता

0: शतों कार्यक्रम में अब बात खास। जी हाँ, बहुत सारी खास बातों में एक खास बात यह है कि जोधपुर में एक खास आयोजन हुआ था। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत की पंचधातु से निर्मित आदमकद प्रतिमा का गुरुवार को लोकार्पण किया गया था। शहर के रातनाड़ा स्थित मुख्य मार्ग पर यह आयोजन संपन्न हुआ था और प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया था। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और ये प्रतिमा 1100 किलो पंच धातु की है और 12 फीट ऊंची है। जब भी आपका रातनाड़ा की तरफ जाना हो, इस प्रतिमा को आप जरूर देखिएगा।
1: और एक खास बात और है, आज कर्म फलदाता शनि देव की जन्म जयंती है। आज ही के दिन सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म हुआ है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो आज शनिवार का दिन भी है और अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है, तो इस दिन का अनंत गुना महत्व बढ़ जाता है। और आज के दिन शनि देव की विशेष पूजा आराधना का विधान बना हुआ है।
0: जनगणना सन 2027 के संबंध में खास बात यह है कि आज से शुरू हो रहा है घर घर सर्वे और स्वगणना का सत्यापन कार्य। जनगणना के प्रथम चरण में ऑनलाइन स्वगणना करने के लिए 15 मई अंतिम तिथि थी। 1 मई से 15 मई तक डिजिटल ऑनलाइन स्वगणना शुरू की गई थी और अब 16 मई से 14 जून तक सर्वे किया जाएगा। घर घर आपके सर्वे करने वाले आएंगे, आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं और अगर आपको कोई शंका हो तो आप उनका आई कार्ड भी देख सकते हैं।
1: और दोस्तों, आज अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ और सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए। ये व्रत कहा यह जाता है कि पति की अकाल मृत्यु को टालने और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए होती है।

के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखकर अपने सौभाग्य की कामना करती हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और अब इस मकाम पर कर देते हैं काम की बात।
1: जी हाँ, काम की बात में आज बात लिस्ट, लिमिट और लोकल की, जिंदगी की इनविजिबल समझदारी है ना, उस पर बात करेंगे।
0: हम सब स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और बनते भी हैं, और असली स्मार्टनेस जो है वो इनविजिबल होती है, और ये इसका असर पूरा दिखता है जिंदगी पर जब हम अपने जीवन में इसे शामिल करते हैं। तो पहला है लिस्ट, और हम सभी जानते हैं लिस्ट सिर्फ हम ये बनाते हैं कि क्या खरीदना है, जबकि हमें बनानी चाहिए क्या नहीं खरीदना है। इसकी लिस्ट बनाओ कि क्या नहीं खरीदना है, नो बाय लिस्ट। इसका असर महीने के आखिर में दिखेगा।
1: जी हाँ, और दूसरी बात हमने कही थी लिमिट की। लिमिट का मतलब होता है हर चीज़ की एक हद तय करना, वो भी पहले से। जैसे मोबाइल ले लीजिए, सबसे पहले तो सब कहते हैं कि समय बर्बाद होता है, पर हल क्या है? लिमिट। दिन में सोशल मीडिया कितने मिनट हो, इसकी लिमिट आप रख सकते हैं। फ्रिज खोलें तो कितने सेकंड की लिमिट रहे, ये भी आप रख सकते हैं। बिना लिमिट के हमारा दिमाग थोड़ा और के जाल में फंस जाता है, और फिर लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है।
0: और तीसरा है लोकल। लोकल एक सोच है, इसका मतलब है जो तुम्हारे 5 किलोमीटर के रेडियस में है उसे पहले चुनो, चाहे वो सब्जी खरीदना हो, मदद हो, दोस्ती हो या काम हो। लोकल मौसमी सब्जी सस्ती, ताज़ा और कम केमिकल वाली होती है। लोकल कारीगर से काम कराओगे तो पैसा आपके पॉकेट में बचेगा, और लोकल दोस्त अगर आप रखोगे तो दुख के समय वो सबसे पहले आपके दरवाजे पर होंगे।
1: जी हाँ, पास किवाड़ किनारा ना रखें। चलिए बढ़ते चले जाइए आगे लहरों के साथ साथ। काम की बात हमने आपसे की है, याद रखिएगा लिस्ट, लिमिट और लोकल।

0: ये जो इनविजिबल समझदारी है और ये काम की बात है, अगर इसे हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो ये हमेशा तो नहीं पता चलेगा कि हमें कितना लाभ हुआ, लेकिन महीने के आखिर में जो 2000 रुपए बचेंगे ना, वो आंखों को ठंडक देंगे
1: जी। और देखिए क्या है ना कि जब भी बाजार जाते हैं तो सखी सहेली जब मिलकर जाती हैं तो चलें बाजार, तो हाँ चलें, क्या लेना है देखते हैं, वहां जाकर
0: समझ में आएगा ले लेंगे, तो, और आपने ये लिया तो मैं भी ये ले लेती
1: हूं। हाँ, ऐसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लेते हैं वो हमें नहीं खरीदनी है, बस ये कि बाजार जाकर देखें कि भाई क्या क्या खरीदना
0: है, जरूरी है।
1: वैसे एक चीज और भी है कि जिंदगी में हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। जी हाँ श्रोताओं, राज की बात है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपकी नजर ये गीत करते हैं।

0: भाई मैं तो बहुत सारी चीजें खरीद कर लेकर आ गई हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई हूँ, अनार के दाने लेकर आई हूँ, हाँ अनार लेकर आई थी, दाने निकाल लिए हैं, बादाम भी लेकर आ गई हूँ, केला भी ले आई हूँ, काजू भी ले आई हूँ और सेब भी ले आई हूँ, अंगूर के दाने भी ले आई हूँ, अब मैं इसका क्या करूँ, कभी तभी इसका क्या करूँ।
1: सारी चीजें ले आई हो तो आज सैटरडे रेसिपी बनाते हैं ना,
0: चलो इसका कुछ बनाते हैं।
1: गर्मी का मौसम है, बिना कस्टर्ड के ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं और जैसा कि अभी गुलनाज ने बताया, उसके लिए एक आम, एक केला, एक छोटे साइज का सेब, कुछ अंगूर के दाने, थोड़े से अनार के दाने, एक कप गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध और एक कटोरी मखाने, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता जो आप लाई हैं,
0: जी जी थोड़ा सा मुझे लीजिए, सब लीजिए, सब लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े भी काट दिए मैंने।
1: अरे वाह क्या बात है, ये तो काम आसान हो गया, यानी इन सारे फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, फिर आप एक बोल लीजिए, उसमें कटे हुए फ्रूट को एक साथ रख लीजिए और फिर जो आपने एक कप ठंडा दूध लिया है उसमें मखाने डालिए, आधा आम का गूदा उसी में डाल दीजिए और एक स्मूदी सी तैयार कर दीजिए और इस स्मूदी को आप कटे हुए फ्रूट में डाल दीजिए और फिर ऊपर से ये जो आपने अनार के दाने, काजू, बादाम, पिस्ता सब जो सरकाए हैं ना काट के, उसे सजा दीजिए, फ्रिज में ठंडा कीजिए और फिर ठंडा ठंडा सर्व कीजिए।
0: जी और पड़ोसी से मांगकर खजूर भी लेकर आई थी उसका क्या करना है
1: तो खजूर लाई थी तो उसे दूध में मिलाकर ब्लेंड कर ले।
0: अच्छा उसके
1: तो उससे मिठास बढ़ जाएगी और ये बिना शुगर का कस्टर्ड बन जाएगा जो हेल्दी भी है।
0: जी हाय मैं तो कितनी थक गई, कितना काम मैंने किया है
1: चलिए तो अब मिलकर लुत्फ उठाते हैं
0: गाने का।

0: तन्हाई में अक्सर वे लोग याद आ जाते हैं जो समाज को बहुत कुछ देकर जाते हैं और अपने भी याद आ जाते हैं तन्हाई में। और यादों की कड़ी में एक नाम याद आ रहा है, मंगेश डबराल जी का। हिंदी की आधुनिक कविता के सम्माननीय और शीर्ष रचनाकारों में से एक रहे हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया। पहाड़ पर लालटेन उनका पहला संग्रह था और उसके बाद में उनका सबसे नया संग्रह जो सन 2013 में प्रकाशित हुआ, नए युग में शत्रु, आज जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं।
1: और यही याद आता है एक और नाम, करमशी जेठाभाई सुमैया। शिक्षा के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के कारण इन्हें याद किया जाता है और महाराष्ट्र में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना आपने की। समाज के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
0: और श्रोताओं, यादों की कड़ी में गुलशेर शानी के नाम से साहित्य जगत में भला कौन अनजान है। शानी क्या थे, उनका लेखन कैसा था, ये उनके पढ़ने वाले हर पाठक को बखूबी पता है। 16 मई 1933 को मध्य प्रदेश के जगदलपुर में पैदा हुए शानी ने 10 फरवरी 1995 को इस फानी दुनिया से विदा ली। इस बीच अपनी शख्सियत से, अपनी कहानियों, उपन्यास, संस्मरण और निबंध से साहित्य जगत को समृद्ध करते चले गए। आज जयंती के अवसर पर हम गुलशेर शानी जी को याद कर रहे हैं।
1: और हम याद कर रहे हैं गोपाल चंद्र प्रहराज को। ये प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक गिने जाते हैं और उड़िया भाषा के ये साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं। इनकी भाषा ज्ञान बड़ी सरल भाषा है और गंभीर विचार युक्त लेखन इनका रहता है। इन्हें प्रसिद्धि मिली उड़िया भाषा कोश के कारण। बड़े आकार के 1500 पृष्ठों के 7 खंडों में प्रकाशित ये कोश 184,000 शब्दों से सजा हुआ है।
0: इसी कड़ी में याद कर रही हैं रूसी मोदी जी को। एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति रहे जिनका पूरा नाम रुस्तम जी होर्मुज़ जी मोदी था। उनके नेतृत्व में औद्योगिक इकाई ने मील के पत्थर हासिल किए और भारतीय इस्पात उद्योग में एक मानक स्थापित किया और इसके लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, यादों की कड़ी में वो याद आता है, लोंगेवाल का युद्ध भारतीय सेना के साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक रहा है। 1971 के युद्ध को तकरीबन 55 साल होने को हैं और इस युद्ध के महानायकों में से एक कर्नल धर्मवीर सिंह को आज हम याद कर रहे हैं। वे भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे और 1971 में लोंगेवाल की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत में उनकी अहम भूमिका थी और इस पर एक फिल्म भी बनी थी 1997 में। फिल्म का नाम था बॉर्डर और इसमें जो अभिनेता थे अक्षय खन्ना, उन्होंने कर्नल धर्मवीर की भूमिका निभाई थी।

0: मोहब्बत तो हो है और हमेशा रहेगी
1: जी, हो गई है मोहब्बत। चलिए इसी मोहब्बत को अब थोड़ा सा विराम देते हैं और श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, कल फिर नमस्कार कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे। तब तक के लिए गुलनाज खान और
0: कविता को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम एक फनकार।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक फनकार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। साज, सुर, शब्द, संवेदनाएं, अदब और आदाब से सजे इस खूबसूरत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपसे मुखातिब है गुलनाज खान और
2: कविता। और आज का ये जो पहला गाना है ये आपके लिए सवाल है। सोचिए जरा, जो प्रसिद्ध नाम आपके दिलो दिमाग में है क्या हम उन पर चर्चा करेंगे या फिर वो नाम जिसे आप कहीं भूल गए हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, फन सिर्फ हुनर का नाम नहीं है, ये वो नेमत है जो मिल जाए तो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। कभी कोई आवाज़ बनकर दिलों में उतर जाता है, कभी रंगों में, आकृतियों में एहसास भर देता है, तो कभी अल्फाज से जिंदगी के नए मायने रख देता है। फन दरअसल रूह का वो सफ़र है जो तालीम से नहीं बल्कि तन्हाई में सब्र, मेहनत, रियाज और यकीन की मंजिल से गुजरता हुआ तकलीफों, तजुर्बात से मुकम्मल होता है। जी हाँ, इतनी भूमिका इसलिए कि वो जो नाम आज हम आपके सामने बताने वाले हैं वो नाम इतना छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा,
2: बहुत बड़ा। और अल्फाज, आवाज और काबिलियत, सभी के रंग उनमें समाए हैं।
1: जी हाँ, बहुत सारी मुश्किलात के दौर से गुजरे थे, अदब और आदाब की दुनिया में खास मुकाम रखते हैं। नाम बताएंगे आपको लेकिन पहले ये गीत आपकी नजर करते हैं।

0: और भारतीय सिनेमा जगत की खासकर बात करें तो स्वर्णिम काल की अगर हम चर्चा करने लगे तो बहुत सारे योगदान सामने आते हैं, जिसमें कई आवाज़ें जुड़ी, कई सारे गीतकार जुड़े, कई सारे संगीतकार होते हैं, वो उन्होंने अपनी प्रतिभा को परोसा।
1: जी हाँ,
0: और कुल मिलाकर उनमें से जो बहुत कामयाब हुए उनके नाम हम सबके होठों पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कम काम किया लेकिन बेहद खूबसूरत काम किया। कार्य सूची भले छोटी रही लेकिन उनका सम्मान जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे पहला एक नाम जो अभी हम याद कर रहे हैं, बाबूराव दत्ता नायक, यानी एन दत्ता
1: जी। श्रोताओं, अनंत आकाश में तैरती धुनों, बीते ज़माने की महक और सुरों से सजी उस सदा के साथ आज हम एक फ़नकार की दास्तान लेकर आए हैं, जिसने अपने संगीत में दर्द को नगमा बना दिया, जिसकी धुनों में मोहब्बत की नरमी थी, तन्हाई की चुभन भी थी, और भारतीय सिनेमा के बेहद संवेदनशील लेकिन कम चर्चित व्यक्ति रहे हैं, बेमिसाल संगीतकार रहे हैं। और उन्होंने जो कुछ समझा, जो कुछ महसूस किया, बस उसे अपने काम में उतारते चले गए। और जो रुपहला पर्दा है उस पर एक ऐसे सितारे की तरह चमकते रहे जिसकी चमक कभी वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ी।
0: और कहा यह भी जाता है गुलनाज कि वो छोटी सी उम्र में मुंबई चले आए थे एक सपना आंखों में लेकर। और मुंबई माया नगरी है, और छोटी उम्र का बच्चा अगर यहाँ अपने सपने पूरे करना चाहता है तो जाहिर सी बात है बहुत संघर्ष को जीते हुए शायद वो कामयाबी का जो परचम है वो देख पाता है।
1: और आज दिल पूछता है कि कैसा रहा था वो संगीत सफर, कैसा रहा था वो समय जब इतनी मशक्कत के बाद कोई इंसान अपनी एक मंजिल तक पहुँच

0: है अपना एक मुकाम बनाता है। श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं उस बेमिसाल संगीतकार को जिसका नाम है दत्ताराम बाबूराव नाइक।
1: जैसे दिल पूछता है आपने कहा
0: जी,
1: तो बिल्कुल ऐसा ही एक जानिसार अख्तर साहब ने गाना लिखा। फिल्म थी ब्लैक कैट, मैं तुम्ही से पूछती हूँ।
0: चलिए श्रोताओं से ही पूछते हैं कि उनका दिल क्या कहता है।

0: श्रोताओं, आज एक फनकार कार्यक्रम में सुरों के हम सफर हैं संगीतकार एन दत्ता। आज यादों की महफिल सजा रहे हैं हम उनके फन से, उनके फसाने से, किस तरह से उनकी संगीत यात्रा शुरू हुई। उनका जन्म तो 12 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ था और तकरीबन 1.5 साल के रहे थे और अपनी मम्मी के साथ में वे गोवा के अरोबा गांव में आ गए थे। उनके पिता का निधन भी बहुत कम उम्र में हो गया था, तो लिहाजा उनका जो पालन पोषण था उनकी माँ ने किया, उनके मामा के घर में उनकी परवरिश हुई और बस इसी तरह से धीरे धीरे गोवा की मिट्टी से बने थे।
1: गोवा के मंदिरों के सत्संग कीर्तन में वो जाया करते थे और उन्हें जब वहाँ जाना बड़ा पसंद आता था और संगीत का माहौल बड़ा पसंद आता था, लेकिन उनके मामा को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने।
0: जी हाँ, उनके घर के पास ही एक पुराने पीपल का पेड़ था और उसके पास एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पर हर गुरुवार की शाम को लोग इकट्ठा होते थे और भक्ति गीत गाते थे। ऐसे में एन दत्ता जी को, छोटे थे वो तो, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था और जब जब उन्हें मौका मिलता था वो हारमोनियम लेकर बजाना भी शुरू कर देते थे। तो हम सोच सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा हारमोनियम बजाता होगा, पर यहीं से ही कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं संगीत के बीज जो थे वो उनके
1: शुरुआत
0: हुए। और उस वक्त श्रोताओं, घुमन तो थिएटर हुआ करते थे, तो उनके गाँव में भी कोल्हापुर से, रत्नागिरी से अलग अलग तरह के जो थिएटर ग्रुप हुआ करते थे वो खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आया करते थे और संगीत में हुआ करते थे वो थिएटर ग्रुप। ऐसे में जो माहौल उन्हें मिला और उनके अंदर संगीत सीखने की इच्छा जगी, लेकिन जब उन्होंने अपने मामा को ये बात कही तो वो जमाना ऐसा

0: था कि बहुत डांट पड़ी उन्हें और उनसे कहा गया कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन संगीत का बीज उनके भीतर आ चुका था,
1: पनप चुका था और ये जुनून जो है वो उन्हें खींचकर मुंबई ले आया।
0: और तकरीबन 11-12 साल की उम्र रही होगी उनकी, बड़ी कमसिन उम्र में उन्होंने घर छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। ये जुनून भी हो सकता है, जिद भी हो सकती है, और उस उम्र में एन दत्ता जी मुंबई आ गए।
1: मुंबई आ गए और उन्होंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया और यहाँ उनकी मुलाकात उनके एक मित्र बन गए चंद्रकांत भोसले, और उन्हीं की वजह से उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। तो गुलाम हैदर की ऑर्केस्ट्रा में और शंकर जयकिशन जी की ऑर्केस्ट्रा में उनको काम मिला और वो प्रभात फेरी में भी जाया करते थे।
0: इतना आसान नहीं था,
1: हाँ, क्योंकि मुंबई के मुंबई में आकर बसना और यहाँ गुजारा करना इतना आसान नहीं था।
0: शुरुआत में तो उन्होंने कई स्टूडियोज के भी चक्कर लगाए और गली मोहल्लों में जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो उसमें भी शिरकत करते थे। जैसा उन्हें संगीत आता था वे गाते थे, और जैसा कि अभी प्रभात फेरियों में भी बताया कि वो गाते थे, और छोटे छोटे जो मोहल्लों में उत्सव होते रहते हैं उसमें भी वो शिरकत करते थे। ऐसे में एक हीरे को जौहरी ने देख लिया।
1: जी,
0: हीरा तो थे एन दत्ता
1: और जौहरी एसडी बर्मन।
0: क्या बात है, एसडी बर्मन साहब की जब नजर उन पर पड़ी तो फिर देखिए, अगर जौहरी देख रहा है तो हीरे को तराशने का काम तो फिर जौहरी करेगा। बस यहीं से ही संगीत का सफर शुरू हो गया।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आज एक फनकार कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संगीतकार एन दत्ता के बारे में। एन दत्ता उन फनकारों में से रहे हैं जिन्होंने शोहरत के शोर में नहीं बल्कि खामोशी से अपने सुरों की साधना को अंजाम दिया और आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। गोवा की मिट्टी से निकला एक साधारण सा नौजवान जिसके दिल के साहिल के संगीत के समंदर की मौजें इस तरीके से टकराती रहीं कि वे अपना वजूद तलाशती भी रहीं और तराशती भी रहीं।
2: और जिस तरह समंदर को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, ठीक इसी तरह से एन दत्ता भी असिस्टेंट ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए क्योंकि उन्हें इस आकाश में उड़ना था, बिल्कुल एक पहचान बनानी थी और अपनी चमक को और निखारना था। और इसी कोशिश ने पहले पंजाबी फिल्मों में 1951 में और हिंदी फिल्मों की बात करें तो मिलाप 1955 की पहली फिल्म रही जो उनके हिस्से में आई और इस फिल्म में वो स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशक बने।
1: जी हाँ, 1951 में उनकी पंजाबी फिल्म आई थी बालो, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स में चेक करें तो 1955 में आई मिलाप फिल्म जो है वो उनकी हिंदी में पहली फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म राज खोसला जी के साथ में की थी और बड़ा ही अच्छा सा वाकया है उनसे मुलाकात का भी। गुरुजत जी की फिल्म थी बाजी। जो 1951 में उसका निर्माण हुआ और इस निर्माण के दौरान ही दत्ता नाइक जी की मुलाकात राज खोसला जी से हुई जो उस समय गुरुदत्त जी के सहायक निर्देशक थे। जब राज खोसला जी ने अपना खुद का निर्देशन का काम शुरू किया तो एन दत्ता जी से उनकी मुलाकात तो हो ही गई थी, तो उन्होंने एन दत्ता जी से कहा कि उनकी फिल्म में भी एन दत्ता जी अपना म्यूजिक दे। और इस तरह से उन्होंने राज खोसला की फिल्म मिलाप और जीपी सिप्पी की फिल्म मरीन ड्राइव में काम किया जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। और यहाँ से उन्होंने अपना आकाश, अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपना तरीका लोगों तक पहुँचाया।
2: बिल्कुल, और यहाँ से ये चमकना शुरू हुए। और रफी साहब का एक गीत सुनते हैं, मरीन ड्राइव का आपने जिक्र किया है।
1: देखिए, आजकल ऐसे गाने बहुत कम सुनने का मिलते हैं और आज खास मौका हमें मिला है कि हम एक ऐसे फनकार को अपने श्रोताओं के सामने लाएं जिनके गीत उन्होंने सुने लेकिन फिर कहीं दिलों से भुला दिए, नहीं याद रख पाए, लेकिन वो दिन बेशक चले गए लेकिन वो जो गाने हैं वो आज भी तरोताजा हैं।
2: उस आवाज, उस संगीत और उन शब्दों का जादू आज भी बरकरार है। सुन के देखिए
1: मरीन ड्राइव का ये गीत।

0: दो नए लोग जुड़ते हैं और सफलता अगर हाथ लगती है तो सफर बरकरार रखने की इच्छा भी जाहिर होती है। तो जीपी सिप्पी जी ने भी यही किया, अपनी अगली फिल्म चंद्रकांता के लिए फिर से एन दत्ता साहब को चुना और साहिर की शायरी को चुना, क्योंकि एन दत्ता का संगीत जो है वो खुद मानते थे कि साहिर के लफ्जों के बिना अधूरा है।
1: और जब जब एन दत्ता जी और साहिर साहब एक साथ आए उन्होंने कमाल कर दिया। और एन दत्ता जी का जो एक स्वभाव रहा है गीतों को, जिस तरह से वो म्यूजिक दिया करते थे और साहिर साहब के शब्दों को बड़ा न्याय के साथ में वो अपना काम किया करते थे, और ऐसे में दत्ता जी जिन जिन के साथ में भी जुड़े, काफ़ी लंबा एसोसिएशन उनका रहा है, और राज खोसला साहब के साथ में भी जिस तरह से उन्होंने काम किया और उसके बाद जी पी सिप्पी के साथ में उन्होंने काम किया, तो उनकी बहुत सारी फिल्मों में एन दत्ता जी ने म्यूजिक दिया था। बहरहाल चंद्रकांता से ये सफर शुरू हुआ था जेपी सिप्पी जी के साथ में, तो क्यों ना
0: इसमें भी एक बड़ी अमर रचना बनकर तैयार,
1: बहुत खूबसूरत
0: गीत है ना जरा
1: जी।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ श्रोताओं, एक फनकार कार्यक्रम में अगले कदम पर हम बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं संगीतकार एन दत्ता जी के बारे में। शुरुआती जो उनके गीत थे, मरीन ड्राइव का गीत अभी हमने सुना और साथ ही उनकी फिल्म मिलाप भी आई थी जिसमें ये बहारों का समा बहुत ही खूबसूरत गीत है, और मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी चंद्रकांता का भी हमने गीत सुना,
2: लाइट हाउस, जालसाज, नाच घर,
1: बहुत सारी फिल्में हैं,
2: 11,000 लड़कियां, दो भाई, पिकनिक, इस बीच कई सारी ऐसी फिल्में आई जिसमें हर फिल्म में कोई एक न एक गाना जो है वो श्रोताओं के दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: जी, और खास तौर पर इन गानों की अगर हम बात करें, शुरुआती गानों में जो मरीन ड्राइव का गाना और मिलाप का गाना और चंद्रकांता का गाना, तो इनमें खास बात ये थी

0: कि ये तीनों ही फिल्मों के गाने साहिर साहब ने लिखे थे और साहिर साहब ताउम्र एन दत्ता जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे, जिगरी दोस्त रहे और जब जब शब्द और सुर उनके मिलते गए कमाल होता चला गया। और उस वक्त जबकि साहिर साहब अपने करियर के शिखर पर थे और एन दत्ता जी बहुत नए थे
1: शुरुआती दौर में
0: जी, ऐसे में रुपहले पर्दे पर लोग डरते हैं नए व्यक्ति के साथ में काम करने के लिए, लेकिन साहिर साहब ने अपना वो कैनवास हमेशा उनके लिए खुला रखा और दत्ता जी भी बहुत अच्छा काम करते चले गए। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में एक दौर आया था जब नया दौर कहना चाहिए कि नया दौर फिल्म बन रही थी, बहुत ही सफल भी हुई ये फिल्म, लेकिन उसके बाद कुछ अनबन हो गई थी ओपी नैयर साहब जी। तो ऐसे में अब नए संगीतकार की जरूरत थी बीआर चोपड़ा जी को, तो उन्होंने साहिर साहब को बोला कि भाई कोई नाम सुझाएं आप और ऐसा नाम जो मतलब ज्यादा मशहूर ना हो। तो ऐसे में साहिर साहब ने एन दत्ता जी का नाम सुझाया था
1: बगैर ये सोचे कि वो शिखर पर हैं और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता
0: और
1: है।
0: बीआर चोपड़ा अपने आप में एक नाम रहे हैं, ऐसे में एन दत्ता जी का फिल्म में उनकी फिल्म में काम करना और नायाब तोहफा अपनी श्रोताओं को देना, दर्शकों को देना, ये भी बहुत अच्छी बात थी। साधना तो सफल हुई ये कहना गलत ना होगा।
1: बिल्कुल। तो ये अगली फिल्म जो उन्हें साहिर साहब की वजह से मिली और बीआर चोपड़ा की फिल्म साधना, और इसके हर गीत ने कमाल दिखाया।
0: उस समय की बहुत बोल्ड फिल्म थी ये।
1: जी हाँ, और खासकर एक गाना जो जिसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और वो था ये।

जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुत

0: इस गीत को सुनकर लगता है ना कि जैसे दर्द को सुरों में पिरो दिया है,
1: समाज को आईना दिखाता हुआ गीत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी पढ़ने में आया कि इस एक गीत को जब बी आर चोपड़ा ने सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दिलो दिमाग में एक स्टोरी बनने लगी और एक नई फिल्म का खाका तैयार हो गया। और वो आगे जाकर फिल्म बनाई भी उन्होंने इस खाके पर, उसका नाम था धर्मपुत्र।
1: जी 1961 में ये फिल्म आई थी। और इसमें भी बहुत ही खूबसूरत गीत थे और इस गीत के मद्देनजर वो गीत बने हैं जिसमें आशा जी का गाया हुआ गीत है मैं जब भी अकेली होती हूँ। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ स्त्री के मनोभावों को जिस तरीके से उन्होंने उसमें व्यक्त किया है।
0: और खयाम साहब ने, ओपी नैयर साहब ने बाद में पहचाना, एन दत्ता ने आशा जी की गजल नुमा आवाज को पहले ही पहचान लिया।
1: क्या बात है।

0: पार्क ही नजर है और अपने काम के प्रति जिस तरह से एन दत्ता जी समर्पित रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
1: एक और फिल्म का जिक्र करते हैं, धूल का फूल, बड़ी ही खूबसूरत फिल्म और खास तौर से कहा जाए तो सांगीतिक सफलता वाली फिल्म इसे कहा जा सकता है।
0: जी,
1: तो इस पर बात करने से पहले इस फिल्म का गाना क्यों ना श्रोताओं की नजर करें।
0: बिल्कुल।

0: कहाँ तक जिए
1: तेरी उल्फत के मारे
0: एन दत्ता जी की धुनों में कहीं पर भी कोई बनावट नजर नहीं आती, एक सच्चाई, एक एहसास उनका दिल से दिल तक का सफर तय करता है।
1: बिल्कुल, कानों से होती हुई हमेशा दिल में उतरने वाली धुनें। और साहिर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एन दत्ता जब किसी गीत को संगीत से सजाते हैं तो लगता है जैसे कोई फकीर अपनी झोली में से सुर निकाल कर परोस रहा है। और खासकर एक गीत की बात करें तो देखिए, सीखना सिखाना कहाँ काम आता है, इस गीत को सुनकर आप समझ जाएंगे कि इस गीत में शंकर जयकिशन के संगीत का भी आनंद है और गुलाम हैदर के ऑर्केस्ट्रा का भी मज़ा है। और भले ही इसमें साज कम लेकिन ये गीत बड़ा ही दमदार है। फिर से एक बार, धूल का फूल।

0: श्रोताओं, पर्दे पर बेशक नायक नायिका से कह रहे हैं कि तुम मुस्कुरा दो, लेकिन इस गीत में दरअसल एन दत्ता जी का संगीत मुस्कुराता है और इस फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत बने। रोमांटिक गीत तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छे बने थे और इसमें एक और गीत है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये गीत ना सिर्फ गीत था बल्कि समाज के ज़मीर की आवाज़ भी बना और इसी धुन का इस्तेमाल एन दत्ता जी ने बतौर संगीतकार, इससे पहले निरूपा राय जी की एक फिल्म आई थी, बड़ी ही भावुक फिल्म थी मोहिनी, जो 1957 में रिलीज हुई थी, राजा मेहंदी अली खान के बोल थे और गीत था क्या क्या ना सितम तुझ पे हुए महलों की रानी, और रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया था और इसी तरह की धुन पर था तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये धुन उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल की थी। दोनों ही बहुत,
1: फिर एक जिद सामने आती है कि जो कल्पनाओं ने सोचा अगर उसकी ताबीर नहीं हुई तो उसे फिर से दोहराया जाना चाहिए,
0: और जब उन्होंने दोहराया तो फिर वो गीत नायाब बन पड़ा,
1: नायाब बन गया और वो श्रोताओं को समझ में भी आ गया। और एक और खास बात है, वैसे ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स को जब हम सुनते हैं तो उनकी एक विशिष्ट शैली होती है जिससे हम उन्हें पहचान जाते हैं, लेकिन एन दत्ता ने ऐसी कोई छाप नहीं रखी, उनका हर गीत नायाब है, हर गीत में एक नई शैली है, एक नया प्रयोग है।
0: कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कभी तन्हाई में कोई ख्याल आया और धुन बन गई। उन्होंने अपनी पहचान को एक तरफ रखा और अपने जो ख्यालात थे उनको देखते हुए वो संगीत देते चले गए। कहीं पर रोमांटिक गीत उन्होंने दिया है तो उसी फिल्म में उन्होंने संदेश देता हुआ गीत दिया है, समाज को एक मोड़ पर लाकर
1: संजीदगी से भरा गाना भी उन्होंने दिया है। और यहाँ थोड़ा सा रिदमिक गाना लेकर हाजिर हुए हैं अगले पायदान पर, ये गाना सुनिए, आपने बहुत कम सुना होगा।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: तो जब बीआर चोपड़ा साहिर लुधियानवी और एन दत्ता की जोड़ी कामयाबी के शिखर को छू रही थी और जाहिर सी बात है बीआर चोपड़ा ने ये ठान लिया था कि मेरी हर फिल्म में एन दत्ता और साहिर जरूर होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो हो ये जरूरी तो नहीं
2: जी,
1: है ना। तो उनकी अगली फिल्म बनने से पहले उन्हें एन दत्ता को हार्ट अटैक आ गया और वो बीमार हो गए, शरीर से ज्यादा मन से बीमार हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि अब वो काम नहीं कर पाएंगे और एक लंबी दूरी बन गई फिल्म से।
2: जी हाँ, धर्मपुत्र उनकी जो फिल्म आई थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी उतनी, और हालांकि उसका म्यूज़िक बहुत उम्दा था और उसके गीत भी बहुत लोगों ने पसंद किए, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि साहिर साहब का नाम तो लोगों को याद रहा और एन दत्ता साहब का नाम कहीं वक्त की गर्त में छिपता चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया एन दत्ता जी की ज़िंदगी में कि वो धीरे धीरे उस रुपहली दुनिया से अलहदा हो गए और अपने आप में वो सिमट गए, और ऐसे में हर तरह की परेशानी फिर उनके पास आ गई। अर्थ की जो परेशानी थी उसके मद्देनज़र उन्होंने छुप छुप कर काम करना शुरू किया था। किसी भी संगीतकार के लिए या यूं कहें कि किसी भी कलाकार के लिए बड़ा ही आजमाइश वाला ये वक्त होता है जो उन्होंने देखा। और ऐसे में उनको फिर साहिर साहब का साथ मिला, चंद अच्छे दोस्त भी रहे उनके जिनके साथ में उन्होंने अगले मुकाम तक की और
1: कुछ फिल्में भी मिली जो कुछ कामयाब हुई और कुछ नहीं भी हुई।

एक इंसान का इंसान से नाता और एक इंसान का इस फानी दुनिया से चले जाना। 30 दिसंबर 1987 का वो वक्त था जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और उसके बाद वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। एन दत्ता का संगीत श्रोताओं शोर नहीं करता, हौले से दिल में उतर जाता है। उनकी कई धुनों में हल्की सी उदासी भी मिलती है, जैसे कोई पुराना खत जिसे बरसों बाद खोलकर पढ़ा जाए, जहां शब्द कम और एहसास ज़्यादा बोलते हैं। वक्त कुछ पलों के लिए जहाँ पर ठहर जाता है और आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर प्रेरित भी करता है।

0: तो दोस्तों एन दत्ता की इस कोशिश को आप और हमेशा आप और हम सभी याद रखेंगे और इसी कामना के साथ इस प्रोग्राम को देते हैं विराम। तो कविता
1: और गुलनाज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फनकार। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम अंदाजे बयां।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।

नमस्कार दोस्तों, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अंदाजे बयां। जहां अल्फाज सिर्फ कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और मैं हूं आपकी मेजबान साक्षी परिहार। और अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे जिंदगी की, कुछ ख्वाबों की, कुछ यादों की और उन एहसासों की जो अक्सर दिल में रह जाते हैं मगर लफ्जों तक नहीं पहुंच पाते। लफ्जों में कहाँ ढूंढोगे मेरी खामोशियों का सफर, हर एहसास का अपना एक अलग ही असर। कुछ बातें वक्त सिखाता है धीरे धीरे और कुछ दर्द इंसान को शायर बना देता है अक्सर।

दोस्तों, जिंदगी कभी किताब जैसी लगती है तो कभी अधूरी गजल जैसी। हर पन्ने पर कुछ नया लिखा होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर

कुछ रास्ते आसान नहीं होते मगर खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग हमारे नहीं होते मगर ज़रूरत होते हैं। सीखा है वक्त से हमने ये हुनर भी, खामोशी में भी कई रिश्ते मुकम्मल होते हैं।

कहते हैं वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। ये इंसान को वो सिखा देता है जो किताबें नहीं सिखा पाती। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कमजोर पड़ जाए अगर हौसले कभी, तो याद रखना अंधेरा भी सुबह बन जाता है।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना धर्म, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखाइए।
0: परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बच्चों, आप NCPCR के लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं, जो कि 21 मार्च से 21 अप्रैल तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, इंसान जिंदा सिर्फ सांसों से नहीं रहता, कुछ ख्वाब भी जरूरी होते हैं जिंदा रहने के लिए। ख्वाब आंखों में सजाना आसान तो नहीं, हर मोड़ पर मुस्कुराना आसान तो नहीं, लेकिन जो ठान ले दिल में अपनी मंजिल, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां। दोस्तों, कभी कभी कुछ अल्फाज सीधे दिल पर दस्तक देते हैं और शायद शायरी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है।

रिश्ते आवाजों से नहीं एहसासों से चलते हैं। कुछ लोग दूर रहकर भी पास लगते हैं। हर किसी को नहीं मिलती वफा इस दुनिया में। कुछ लोग मिलकर भी बस याद रहते हैं।

जिंदगी में मुश्किलें सबके हिस्से आती है, मगर कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। नाराजगी की बड़ी प्यारी चीज है, रिश्तों में जान डाल देती है, वरना बात ही कहाँ होती है उनसे जो दिल में सबसे खास रहते हैं।

आंधियों ने कोशिश बहुत की हमें गिराने की, मगर हिम्मत ने इजाजत नहीं दी हार जाने की। अब आदत सी हो गई है मुश्किलों से लड़ने की, क्योंकि ठान ली है मंजिल तक जाने की। जो दर्द में मुस्कुरा दे वही कमाल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं ये हाल होता है। जिंदगी आसान नहीं होती जनाब, मगर हौसला इंसान को बेमिसाल होता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं भूपेंद्र सिंह की इस गजल की ओर।

तो दोस्तों, अल्फाज खत्म हो सकते हैं मगर एहसास नहीं, और शायद इसी का नाम है अंदाज़े बयां। कुछ बातें दिल में रह जाए तो अच्छा लगता है, हर एहसास जुबां पर आए ज़रूरी तो नहीं। ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है दोस्तों, हर सफ़र का मुकम्मल हो जाना ज़रूरी तो नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल, आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलो को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार की फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का गाना सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और

बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो कई गाने हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे

जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सक कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना, बताइए किनके स्वरों में ये गाना है।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थीं और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांदी ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरी।
2: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर सूर्य नगरी चैनल एवं

FM बैंड 102.1 MHz पर FM सन सिटी चैनल दोपहर के ठीक 1:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: बिल्कुल, इंतजार आपका हुआ है खत्म। हाजिर है आपकी पसंद का कार्यक्रम लेकर नारी वाटी का। सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: वंदना शर्मा का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की परिकल्पना और संपादन है सफलता चारण का। तो वंदना, आज के इस खूबसूरत सफर में हम महसूस करेंगे इंतजार के उन अनकहे जज्बातों को, जो कभी मुस्कान बनते हैं तो कभी यादों की हल्की सी दस्तक।
1: इंतजार कभी आंखों को नम कर जाता है, कभी सपनों को और सुंदर बनाता है, पर सच तो यही है इस दुनिया में इंतजार ही उम्मीद को जिंदा रखता है।
0: लेकिन इंतजार की राहें बड़ी लंबी होती है, जो काटे नहीं कटती। साल गुजर जाते हैं मगर महीने नहीं, महीने गुजर जाते हैं मगर दिन नहीं।
1: दिन गुजर जाते हैं मगर वो एक एक पल, वो एक एक लम्हा मानो समय की हथेली पर ठहर गया हो।
0: और वंदना, देखो, इंतजार सिर्फ समय का गुजरना नहीं होता, इंतजार तो भावनाओं का वो सफर होता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो घड़ी की टिक टिक भी बहुत ही मन को भारी लगने लगती है, रातें लंबी हो जाती है और खिड़की पर टकटकी लगाए ये मन बस ढूंढता रहता है किसी को।
1: आशा, कितना अजीब है ना, जब हम खुश होते हैं तो समय पंख लगा कर उड़ जाता है, लेकिन जब हम किसी का इंतजार होता है तो वही समय कदम कदम पर ठहर जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि इंतजार में इंसान छोटी छोटी बातों से भी जुड़ जाता है? मोबाइल की हर घंटी पर लगता है शायद कोई फोन, होगा कोई दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा होगा। हर आहट पर लगता है कि समय है जो गुजरते पल के साथ खत्म होगा या नहीं होगा ये इंतजार।
0: और गुजरते वक्त के साथ ये पल तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो समा प्यार का हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहता है।

0: हम बात कर रहे हैं इंतजार की आज के कार्यक्रम में, और जीवन और इंतजार दोनों साथ साथ चलते हैं। और अगर हम कहें कि जो जीवन का दूसरा नाम इंतजार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रेम की बात करें तो प्रेम में इंतजार की मिठास बिल्कुल अलग होती है। वास्तव में वंदना, इंतजार में कोई बेहतर, अगर इंतजार को कोई बेहतर समझ सकता है ना, तो वो है प्रेम। प्रेम में इंतजार का एक अलग ही सुकून होता है। ये इंतजार प्रेम को और गहरा बना देता है, और इसी प्रेम के इंतजार में विश्वास की भी परख होती है। इंतजार की फीलिंग को हम शब्द तो नहीं दे सकते, बस दिलो दिमाग में एक ही जुनून छाया रहता है, कब इंतजार खत्म होगा। इंतजार में थोड़ी खुशी और थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी होती है।
1: आशा, इंतजार एक ऐसा शब्द है जिसमें बेचैनी भी है और एक अजीब सा सुकून भी। और जब बात प्रियसी के इंतजार की हो तो वो घड़ी की हर टिक टिक दिल की धड़कन बन जाती है। प्रेम में इंतजार केवल समय का गुजरना नहीं है, बल्कि यह तो उस एहसास की इबादत है जो हमें किसी खास से जोड़े रखता है।
0: और जिस शख्स का इंतजार होता है, जैसे वो आसपास ही महसूस होता है, परछाई की तरह। हम उन घड़ियों को, उन पलों को इंतजार में ही जी लेते हैं जो शायद हकीकत में कभी होगी ही नहीं। और इंतजार चाहे किसी का भी हो, एक बात तो है, इस इंतजार में रातें लंबी हो जाती है, नींद उड़ जाती है, चैन खो जाता है। और सच कहें तो ये इंतजार जिंदगी, ये जो इंतजार होता है जब रात गुजरती है चांद को देखते देखते, तो किस तरह से वो भी काली स्याही रात काट लेता है, और उस चांद के साथ साथ हम भी वो रात काट लेते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि मिलन से ज्यादा कहीं ज्यादा खूबसूरत इंतजार की वो घड़ियां होती है जिनमें हम अपनी पसंद के उस शख्स की यादों को बुनते हैं। खिड़की के पास बैठकर राहों को देखना, मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार नजरें टिकाना, और हर आहट पर ये सोचना कि शायद वो आ गया। इस इंतजार में जो तड़प होती है वही तो प्रेम का को और गहरा बनाती है। आशा, प्रेम में इंतजार करना असल में खुद को खोकर किसी और को पाने की तैयारी होती है।
0: और महान शायर और कवि बशीर बद्र साहब ने कहा भी है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और प्रेम की इस प्रतीक्षा पर अहमद फराज की जो पंक्तियां हैं वो क्या कहती है?
1: वो कहती हैं कि आंखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, तुम मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर सुकून बहुत है तुम्हें इंतजार में पाकर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: वंदना, प्रेम में बहुत मिठास होती है। जब इंतजार खत्म होता है तो प्रेमी को पाकर मन हर्षित हो जाता है, लेकिन एक तरफा प्यार और इंतजार, ये बिल्कुल अलग इसकी फीलिंग होती है। कभी कभी, क्योंकि जब इंतजार एक तरफा होता है तो प्रेम भी एक तरफा होता है, जहाँ मन किसी को अपना मान लेता है लेकिन दूसरी तरफ प्रेम से अनजान व्यक्ति को उस प्रेम का आभास भी नहीं होता है। इस इंतजार में शिकायतें कम होती है क्योंकि उम्मीदें भी कम होती है, क्योंकि एक तरफा प्यार है तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पर एक बात इसमें होती है और वो है दुआएं। और जब ऐसा प्यार जब दुआओं का रूप बन जाता है तो ऐसी कहानियां भले ही अधूरी रह जाती है, मगर वो अमर कहानियां बनके हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल आशा, क्योंकि इंतज़ार प्रेम की वो कसौटी है जहाँ दूरियाँ हार जाती है और विश्वास जो होता है वो जीत जाता है। जब आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो आप उसे सिर्फ समय नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहे होते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगा। और आपने बात की एक तरफा प्रेम की, तो यह एक तरफा प्रेम जो है वो इंतज़ार ही तो है जो मिलन की उस पहली मुस्कुराहट को अनमोल बना देता है जो कभी आने वाली ही नहीं है।
0: और हर इंतजार की मंजिल इंतजार का खत्म होना नहीं होता। कभी कभी इसकी मंजिल ना होने के बावजूद इसमें अनोखी खुशी होती है, एक अलग सा सुकून होता है।
1: क्योंकि आशा इसमें इजहार तो होता नहीं, तो चुपचाप से दिल में दबी फीलिंग्स, खामोशी पढ़ना और खामोशी जो होती है वो समझना हमें सिखा देता है। ये कला जब आ जाती है तो उसे प्यार का इजहार, इंतजार का जो मजा होता है ना, वो अलग ही

0: होता है।
1: बिल्कुल, एक तरफा जो प्यार होता है उसका इंतजार हमारी और आपकी सोच को बहुत ही गहरा बना देता है, हमारी भावनाओं को परिपक्व बनाता है।
0: तो अगर आप भी आज किसी का इंतजार कर रहे हैं तो उस इंतजार से शिकायत मत कीजिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि हर लंबी प्रतीक्षा के बाद जब दीदार होता है तो वो लम्हा सदियों की थकान मिटा देता है। तो इंतजार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो वक्त की धूल में भी धुंधला ना पड़े।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सखियों ना जाने किसका इंतज़ार, इंतज़ार तो बहुत ही खूबसूरत होता है और हमें किसी ना किसी का इंतज़ार होता है। हमने बात की इंतज़ार की तो आशा, जो सैनिक की पत्नियां होती हैं ना, उनको भी एक अलग ही इंतज़ार होता है। वो जो इंतज़ार होता है वो सिर्फ समय का गुजरना नहीं होता, वो भावनाओं का सफ़र होता है जिसमें दिल जुड़ा होता है। हर शाम पर जो अपने पति के घर लौटने का इंतज़ार होता है, लेकिन जो सरहद पर जिसका पति तैनात हो, उस प्रेयसी, उस पत्नी का एहसास ही अलग होता है, क्योंकि उसमें प्यार भी होता है और गर्व भी, और हर पल छिपी हुई चिंता भी।
1: हाँ जी, हर दिन उस सैनिक की पत्नी की, या जो जिस रूप में भी हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, है ना, और जो आर्मी है, तो किसी भी वो पोस्ट पर है तो उसकी पत्नी का जो वो एहसास होता है वो अलग होता है। हर दिन उसकी शुरुआत जब होती है तो वो मंदिर के आगे दिया जलाती है, एक ही प्रार्थना उसकी जबान पर होती है, लंबी हो उम्र यही दुआ है, देश की सेवा करते रहें, सरहदों पर सेवा करते रहें।
0: बिल्कुल, और जो ये जो होती है ना पत्नियाँ, सैनिक की जो पत्नियाँ होती हैं, ये एक इनकी एक अलग ही छवि होती है, क्योंकि इनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ होती है, और इतनी सारी परेशानियाँ और जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग मायने से जीती हैं। वो उस परेशानी में भी गर्व महसूस करती हैं, और कभी भी अपने पति को, जो सोल्जर जो वहाँ पर तैनात है सीमा पर, उसे कभी नहीं बताती कि मुझे क्या परेशानी है, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। हमेशा एक ही जवाब देती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सही हूँ, जिससे जो सोल्जर होता है वो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी शिद्दत से कर सके।
1: हम सब कहते हैं कि सीमा पर तैनात एक सोल्जर लड़ता है, लेकिन कोई यह नहीं जानता, कोई यह नहीं देखता कि एक पत्नी भी घर पर लड़ रही होती है। माँ को भी डर, माँ के अंदर भी एक डर होता है, क्योंकि सेना पर जो, मतलब सरहद पर जो जवान लड़ते हैं, तो माँ के मन में भी एक डर होता है, कहीं से कुछ भी खबर आ सकती है, और साथ साथ वो लड़ती है दोनों अकेलेपन से, डर से, अनगिनत रातों जब रातें कटती नहीं और कोई खबर ऐसी, कोई फोन ऐसा दिल की धड़कने बना देता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उन पत्नियों को ये सिखाया भी जाता है कि किसी तरह की भी घर में परेशानी हो, लेकिन जो बॉर्डर पर तैनात है उन सैनिकों को ये सारी बातें ना बताई जाए, क्योंकि घर की टेंशन से वो दूर होंगे, तभी तो वो बेफिक्री से देश की सेवा कर पाएंगे। और जब सरहद पार से फोन आता है कभी, और ये संदेश आता है कि अगले महीने मैं छुट्टी पे आने वाला हूँ एक महीने की, तो उस पल में महीनों का इंतजार खुशी बनकर आंखों में उतर जाता है। और सोल्जर की पत्नी की तो दिवाली भी वही होती है और होली भी वहीं से शुरू हो जाती है। क्या करूं, घर सजाऊं, दिए जलाऊं, मिठाइयां बनाऊं, और ना जाने कितने कितने ख्वाब वो देखती है, और उन ख्वाबों को वो हकीकत में होता हुआ इंतजार के बाद देखना चाहती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की

0: बदलो बदलो आदत बदलो,
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: इंतजार आशा इंतजार का एक रूप वो भी होता है जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, बस एक खामोश सी दुआ होती है। हम अक्सर उन सपनों की बात करते हैं जो सात समंदर पार पूरे होते हैं, लेकिन आशा उन आँखों का क्या जो उन सपनों को विदा करने के बाद दरवाजे पर ही टिकी रह जाती है?
3: बिल्कुल, आप बात कर रहे हो उन माँ बाप का जो पढ़ा लिखा कर बच्चों को बाहर भेज देते हैं जॉब के लिए, और जब बच्चे अपने पंख फैलाकर सुनहरे भविष्य की तलाश में परदेश चले जाते हैं तो पीछे छूट जाते हैं बूढ़े माँ बाप, और उनके हिस्से में आता है एक सन्नाटा। घर की अब उनकी जो दीवारें हैं घर की, अब बच्चों की आवाज़ों से नहीं बल्कि उनकी यादों की जो गूंज है वही घर में गूंजती है। वो जो माँ बाप होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी बच्चों को सही राह में लाने के लिए, अब अपनी बाकी उम्र बस बच्चों के इंतज़ार में ही गुजरती रहती है।
2: एक अजीब सी टीस होती है उनके मन में कि एक अंदर एक समंदर सा होता है दुख का कि काश कोई पास होता जो दवा का वक्त याद दिला देता या बस साथ बैठकर चाय पी लेता, लेकिन जब वीडियो कॉल की घंटी बजती है ना तो वे अपनी सारी पीड़ा अपनी झुर्रियों वाली मुस्कान के पीछे छिपा देते हैं और वे कभी नहीं कहते कि बेटा घर कब लौट कर आओगे, वे बस यही कहते हैं हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, तुम अपना ख्याल रखना।
3: ये तो दर्द आज के समय का तो सबसे बड़ा दर्द है, ये पीड़ा तो आज के समय की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि एक तरफ अगर बच्चों को घर में बिठा लिया जाए इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन देने के बाद तो वो भी माँ बाप को अखरता है, और बच्चे बाहर चले जाते हैं तो सन्नाटा उनके हिस्से में आता है। तो कहा भी है कि चलती फिरती हुई आँखों से अजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है, और इस एकाकीपन और इंतज़ार पर ये पंक्तियाँ भी बहुत गहरी चोट करती है कि बूढ़े माँ बाप की आँखों में झांक कर देखो वहाँ एक घर बना है जिसमें कोई रहता नहीं।
2: यह इंतज़ार की दुनिया का सबसे कठिन इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ माँ बाप को पता होता है कि परिंदा अब अपना घोंसला कहीं और बना चुका है, फिर भी हर आहट पर दिल धड़कता है कि शायद इस बार दरवाजे पर वो अजनबी नहीं कोई अपना होगा। वे अपनी खुशियाँ अपने बच्चों की कामयाबी में ढूंढ लेते हैं और अपने अकेलेपन को पवित्र बलिदान का नाम दे देते हैं।
3: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने घर से दूर हैं तो याद रखिएगा कि किसी पुराने घर की खिड़की आज भी आपकी राह देख रही है, आपके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही है, और उस चेहरे की जो मुस्कान है वही

प्लीज सुकून देगी आपको। तो जब भी समय मिले एक फ़ोन घुमा दिया कीजिए और वीडियो कॉल करके अपने बूढ़े माँ बाप का हाल चाल जरूर जान लीजिए कीजिए।

0: इंतज़ार हम सभी को होता है और हम देखते हैं कि भूखे को रोटी का, प्यासे को पानी का और मायूस दिल को प्यार का इंतज़ार रहता है। घोंसले में नन्ही नन्हे चिड़िया के बच्चे हैं जो उड़ नहीं सकते। माँ गई है दाना लाने, उन चूज़ों को माँ का इंतज़ार, दानों का इंतज़ार कि माँ आएगी अपनी चोंच से हमें दाना चुगाएगी।
1: आशा, कभी सोचा है आपने कि जो इंतज़ार होता है वो बिना धैर्य के नहीं किया जा सकता, और बिना धैर्य के किया गया इंतज़ार किसी सजा से कम नहीं होता। जहाँ इंसान हर पल झुंझलाता है, परेशान होता है, लेकिन जब उसी इंतज़ार के साथ धैर्य जुड़ जाता है तो वह एक साधना बन जाता है। धैर्य हमें सिखाता है कि जो चीज़ हमारे हक की है वो सही वक्त आने पर हमें ज़रूर मिलेगी, बस हमें उस वक्त के आने तक खुद को बिखरने नहीं देना है।
0: और वंदना, एक बात तो है, इंतज़ार और धैर्य का गहरा और अटूट संबंध है। धैर्य का मतलब सिर्फ खाली बैठ के इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों जो मुश्किल पल होते हैं उसमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, शांति से काम लेना। तो इंतज़ार यानी खुद को संभालना है और खुद को उस समय तक कंट्रोल करना है कि तुम्हारा वक्त अभी नहीं है, अभी तुम्हारे पास सिर्फ इंतज़ार है, और उस इंतज़ार में प्रयास भी हो, प्लानिंग भी हो और विश्वास भी हो।
1: इसीलिए किसी ने कहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आए फल होए। कबीर साहब ने कितनी सादगी से ये कहा है कि माली चाहे कितने एक ही दिन में

0: जीवन में हर पल इंतज़ार रहे, हर रात को सुबह का इंतज़ार रहता है और सुबह को शाम का इंतज़ार। हर कोई उम्मीदों से भरा है और उसी उम्मीद को पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है।
1: आशा इंतज़ार की भट्टी में जो धैर्य है वो एक तरह का तप है। अक्सर हम इंतज़ार को मजबूरी मान लेते हैं, एक ऐसी बेबसी जिसमें हमारा वक्त हाथ से फिसलता जाता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इंतज़ार तब तक सिर्फ एक बेचैनी है जब तक उसमें धैर्य यानी सब्र का अमृत ना घुले। इंतज़ार अगर एक रास्ता है तो धैर्य उस रास्ते पर बिना थके बिना डगमगाए चलने का हौसला है।
0: और जहाँ आपने कहा कि इंतज़ार बेबसी है, तो वास्तव में कई बार ऐसी बेबसियाँ हमारे जीवन में शामिल हो जाती है, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कोई बीमार है, अस्पतालों में भर्ती है, तो उसको इंतज़ार है, जो बीमारी से जूझ रहा है, कि कब मुझे छुट्टी मिले और घर जाकर चैन से मैं सो जाऊं। और साथ में जो परिजन है, उनको जो तकलीफें रहती है, घर और हॉस्पिटल के बीच में जो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको भी यही इंतज़ार रहता है कि ज़िंदगी कहीं इसी इन्हीं बातों में उलझ गई है और ये चक्कर कब ख़त्म होंगे, ये पीड़ा कब ख़त्म होगी। तो हर चीज़ में इंतज़ार है, बच्चों को जॉब मिलने का भी इंतज़ार, हर चीज़ में इंतज़ार है।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि सब्र की एक मुकम्मल इबादत है जो वक्त से पहले कभी नहीं खुलती। जिंदगी में चाहे

0: किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार हो, किसी नए मोड़ का हो या किसी खास इंसान का, जब आप धैर्य का दामन थाम लेते हैं तो आप समय को काटना बंद कर देते हैं, बल्कि आप उस समय को जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आशा धैर्य जो होता है वो आपको भीतर से मजबूत बनाता है, ताकि जब आपकी प्रतीक्षा खत्म हो और कामयाबी आपके दरवाजे पर आए तो आप उस कामयाबी को संभालने के काबिल बन सकें।
1: बिल्कुल, जो लोग इंतज़ार करना जानते हैं वे समय की खामोशी में भी उम्मीदों की धड़कनें सुन लेते हैं, क्योंकि इंतज़ार हमें मुस्कुराना सिखा देता है और हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। और हम बहुत कुछ बदलना चाहते हैं मगर बहुत कुछ अपने हाथ पे नहीं होता वंदना। उस वक्त हम इंतज़ार करते हैं बदलाव की बयार का, कभी हवाओं का रुख ज़रूर बदलेगा और ये रुख बदलता भी है। तब मन गहरी सांस लेता है और तब मन कहता है कि धैर्य जो है वो सबसे बड़ी हमारी ताकत बन गया है। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगी
0: जी
1: कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इंतजार ना करो, इंतजाम करो, क्योंकि इंतजार वक्त जाया करता है। लेकिन इस वक्त को जाया नहीं करके इंतजार को इंतजाम से अगर जोड़ दिया जाए, यानी प्रयासों में सृजनता लाई जाए, और तो जो हम प्रतीक्षा करते हैं ना, उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही खूबसूरत होगा।
0: जी अगर सखियों, अगर आज आप भी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े होकर किसी चीज की राह देख रहे हैं तो बेचैन मत होइए। अपने इंतजार को धैर्य का खूबसूरत लिबास पहनाइए। यकीन मानिए, सब्र के धागे से ये सब जो होता है, सब्र का धागा है, उसे बुन देगा, और सपने जब पूरे होंगे तो उनकी चमक सदियों तक फीकी नहीं पड़ेगी। तो रखिए थोड़ा सा सब्र, मुस्कुराते रहिए और जीते रहिए हर लम्हे को।

0: अभी जो मौसम चल रहा है, चिलचिलाती धूप का, यूं लगता है मानो सब कुछ जल जाएगा, लेकिन वंदना जलता कुछ भी नहीं है। शाम होते होते जैसे सब कुछ शांत हो जाता है, और ये धरती भी जानती है कि जो भीषण गर्मी से जो तप रही है ना, उसको पता है कि मेरा इंतजार हर बार खत्म होता है और इस बार भी होगा, कि जब बारिश की फुहारें मिट्टी को छूती है तो जैसे वरदान साबित होती है, सूखी जमीन मुस्कुरा उठती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है, धरती का श्रृंगार हो जाता है।
1: आशा, और जो मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में जब घुल जाती है तो लगता है कि ये कैसा इत्र है जो कहीं धूल में घुलकर हमें सुकून दे रहा है। पेड़ पौधे धुल जाते हैं, चमक जाते हैं और चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। ये मौसम, ये ऋतु का जो ये चक्र है, हमें बताते हैं कि इंतज़ार ज़रूरी है। जो धरती तपे नहीं तो पहली फुहार से कैसे हर्षित होगी।
0: बिल्कुल, और एक इंतज़ार वो भी है जो सबसे अलग है। इंतज़ार की एक सूरत वो है कि जब फटी हुई ज़मीन की दरारों में जो छिपी होती है, एक किसान का इंतज़ार जो सिर्फ बादलों से बरसती बूंदों को नहीं बल्कि एक बेहतर कल और अपनी मेहनत के सही मोल का होता है। जब वह तपती धूप में हल चलाता है, कड़कती ठंड में पानी लगाता है, तो उसका हर पसीना मिट्टी में एक उम्मीद जगाता है।
1: किसान का जो इंतज़ार है वो दुनिया के हर इंतज़ार से अलग है। वह इंतज़ार करता है उस बदलाव का, जहां उसकी मेहनत को सिर्फ अनाज के दानों में नहीं बल्कि सम्मान की नज़रों में मापा जाए। वह थक जाता है मगर हारता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बीज बोने और फसल काटने के बीच जो समय बीतता है वही उसके धैर्य का की असली परीक्षा होती है। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपनी ज़मीन और अपने खुदा पर, अपने भगवान पर अटूट भरोसा होता है कि आज नहीं तो कल यह मिट्टी सोना ज़रूर उगलेगी।
0: और किसान का इंतज़ार सिर्फ एक फसल का इंतज़ार नहीं है, उसे उस दिन का इंतज़ार है जब वह खेत की हर मेड़ पर खुशहाली का दिया जलाता है। वह जानता है कि वक्त बदलेगा, हवाएं बदलेगी और उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और बिल्कुल वंदना, सलाम है उस अन्नदाता के हौसले को जो खुद भूखा रहता है और पूरी दुनिया के पेट भरने की उम्मीद को जिंदा रखता है। उसका इंतज़ार ही इस दुनिया की नींव है।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

0: आशा बात हो रही है इंतज़ार की, तो एक प्यारा सा इंतज़ार और भी होता है जो होता है दोस्ती का, जो समय की धूल के साथ उस पर धूल तो जम जाती है, लेकिन जब सदियों बाद पुराने दोस्त से मिलना होता है तो कहने को तो ये सिर्फ एक मुलाकात होती है, लेकिन असल में ये अपने ही बीते हुए बचपन और उन बेपरवाह गलियों से मिलना होता है जिनमें हम जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ आए। आज जब घड़ी की सुइयां करीब आ रही हैं तो सीने में एक अजीब सी हलचल है। क्या वो अब भी ऐसा ही दिखता होगा? क्या हमारी बातें अब भी उसी मोड़ से शुरू होंगी जहाँ हमने छोड़ी थी? वो हंसी, वो बिना बात के झगड़े और वो उधार की चाय के किस्से, सदियों का इंतज़ार आज जैसे कुछ ही पलों में सिमट आया है। पुराने दोस्त का जो इंतज़ार होता है वो असल में अपनी जड़ों को लौटने का इंतज़ार होता है।
1: और साथ में एक इंतज़ार हम भूल रहे हैं और वो है बच्चों का इंतज़ार। इंतज़ार हर किसी को है, तो बच्चों को भी है। बच्चों को स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार कि कब छुट्टी होगी। बच्चों को रहता है गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार जो अब हो चुकी है, क्योंकि वो दादी नानी के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उनको एक मतलब वो अच्छा लगता है उनको जब उनकी हॉबीज़ पूरी होती है।
0: हम भी बच्चे थे आशा, और हमें भी ऐसा लगता था कि जल्दी से छुट्टियाँ आएँ और हम सारे हमारे पेंडिंग काम कर लें और सारे जो गेम्स हमारे रखे हुए हैं उनको निकाल के बस खेलना स्टार्ट कर दें।
1: और बच्चों को एक इंतज़ार और रहता है, वो जन्मदिन का, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन का एक अलग ही मजा होता है। उनको एक स्पेशल अटेंशन मिलता है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, नए खिलौने मिलते हैं जो उनके बचपन के साथ ही होते हैं। और साथ में बच्चों को इंतज़ार होता है मेलों का, त्योहारों का, क्योंकि इन्हीं त्योहारों में वो बहुत कुछ नया सीखते हैं जिससे उनमें नए संस्कार भी डेवलप होते हैं। और मेलों में तो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, झूले, गेम जोन में जाकर गेम खेलना, तो ये जो बच्चों का इंतज़ार है ये अलग ही मौज मस्ती का है जो उनको काफ़ी मज़ा देता है।

0: तो सखियों, सच तो ये है कि इस संसार में इंतजार ही उम्मीद को जिंदा रखता है।
1: और इसी इंतजार को अब खत्म करते हैं इस कार्यक्रम का, क्योंकि आशा जी समय हो चुका है पूरा। और आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोगी थे HPT से विक्रम सिंह भाटी, प्रेम किशोर सैन, और कंट्रोल रूम से प्रकाश पवार, FM पर थे CL सोनी, और कंसोल से प्यारे प्यारे गीतों तक को आप तक पहुंचाया मेघा गौड़ ने।
0: और इस कार्यक्रम की परिकल्पना और संपादन था सफलता चारण का। अपने सपनों को बुने इंतजार और धैर्य के साथ, इसी के साथ अपनी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: वंदना शर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी वाटिका। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज

0: रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

0: में प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन

0: परिवर्तन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं असम पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं एक रिपोर्ट
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने विकास के कामों इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे प्रवेश अड़ियचा आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं एक रिपोर्ट
3: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था मानस प्रतिम शर्मा आकाशवाणी समाचार गंगटोक
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011

0: से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डार्क के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म डाक का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

0: कोरोना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एम जी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये तिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोकझोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब डीजे इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ओह, इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
2: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
1: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
2: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
1: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
2: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
1: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
2: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
1: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
3: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
2: इस पर दया कीजिए।
1: अरे, ये कौन लोग हैं?
2: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
1: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
4: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
5: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
4: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
1: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
5: पुरो वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
4: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
4: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
5: और मैं हूँ शारद्वत।
1: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
4: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
5: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
1: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
4: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन,

0: किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
1: फिर किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
2: शकुंतला
1: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
2: कुलपति कब लौटेंगे?
0: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
1: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
0: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
2: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
1: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहनों की महक तो कुछ भी नहीं, वह लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रेमवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रेमवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रेमवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
3: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
3: तेरी तरह
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला।

0: तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कर्ण कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
0: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
3: अरे
2: भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे।
3: अरे अरे मेरा पीछा छोड़,
2: भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
0: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
2: अरे बचाओ, बचाओ ना।
4: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
0: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना।
0: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
0: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
2: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जाओ।
2: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
0: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कर्ण यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
0: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
2: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
0: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
0: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
0: कुलपति कणु की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कणु तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
0: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डोलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
0: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहाँ भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: किंतु क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
2: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
0: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
5: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
0: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
5: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
5: ये लीजिए
2: अंगूठी।
1: किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
0: आपके पास ये अंगूठी?
5: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
0: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
5: मैं आभारी हूँ।

0: के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
1: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए।
2: हे भगवान, अब क्या होगा।

0: हाथी की यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
1: हाँ, हाँ, चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला। चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
2: माधव्य,
1: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
2: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
1: वाह, क्या भंगिमा है। आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
2: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
1: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
2: हाँ माधव्य, बहेलिया का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा
1: है। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
2: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूँ माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
1: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
2: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
1: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
2: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
1: है? वो कैसे?
2: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
1: आपको देख तो रहा हूँ।
2: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूँ।
1: आश्रम का अलंकार?
2: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
1: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
2: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
1: विशेष बात?
2: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
1: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
2: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
3: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
2: उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो।
3: जो आज्ञा महाराज।
4: महाराज की जय हो।
2: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
5: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
2: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
5: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
6: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
5: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
2: आप लोग चिंता न करें। रेवतक।
3: आज्ञा महाराज।
2: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
3: जो आज्ञा महाराज।
2: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
5: आर्य की जय हो।

0: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
0: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
2: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
2: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
3: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
3: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
3: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
3: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
3: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
2: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
3: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: आह, क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखे।
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है।

0: पैसे की किंतु किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
1: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
1: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
1: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
1: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
1: फिर
2: उसे फूलों में छिपा कर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुँचा देंगे।
1: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
1: किंतु क्या शकुंतला?
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
1: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुला है ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था। तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा

0: ट्रैवलिंग,
1: जी
0: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के, यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी बोलते थे ठीक है आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ बुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा,
1: अन्ना जी मतलब
0: श्री रामचंद्र जी, तो षणमुखन में शो था और उनका प्रोग्राम में तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए तकलीफ देने के लिए ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
1: अच्छा।
0: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठे।
1: अच्छा।
0: एक छोटी गायिका थी मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी, माडगुळकर जी ने ही लिखा था
1: जी, जी,
0: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एमवी में।
1: अच्छा।
0: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
0: एक समय काली पास सुर है तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
0: ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है, उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो तो नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा, तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहता है जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी

0: चाहिए ही चाहिए।
1: हाँ, हाँ।
0: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
1: जी,
0: पुराना
1: जी।
0: कोई फिल्म का
1: हाँ।
0: और सेकंड गाना लावणी,
1: अच्छा
0: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
1: हाँ, हाँ।
0: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा,
0: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका।
1: अच्छा,
0: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अंबा, वो गई है। वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है। तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
1: बिल्कुल,
0: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
1: कटआउट बनाया,
0: कटआउट बनाया था।
1: हाँ, हाँ,
0: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
1: जी, जी, जी।
0: मेटल का। तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनेहर यादव, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका बाबा के पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
1: हाँ।
0: मंदसौर करके। तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
1: अच्छा।
0: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: है, रहा
0: है। ऐसा लगता
1: अच्छा,
0: था
1: अच्छा।
0: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ।
1: हाँ।
0: मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की। तो बोले नहीं नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ।
1: अच्छा।
0: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था।
1: हाँ,
0: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा।
1: क्या बात, क्या
0: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया आदमी।
1: श्रोताओं की बात निकली है
0: जी,
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में, गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है।
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं, लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: फिर दो गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में, किसी गांव में, छोटे से गांव में भी, तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
0: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: ये है अच्छा लगता, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: वो रफी साहब का गाना, एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: वो आगे आके उनको उसको एक बदले ना, मैं बताती हूँ आपको।
1: हाँ, हाँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अपनी जानी इसकी अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी नहीं क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं
0: जरूर

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है, ये ठपका दोष आता है, इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही वो उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगड़ धिंगा ये वो डांस वो, ऐसा नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना

0: के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उसके प्रिंसिपल थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मेरा शो देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है,
1: हाँ
0: तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: अच्छी है,
1: क्या बात है।
0: दूसरा कोई कहने की
1: हाँ
0: जरूरत ही नहीं
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
0: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
1: तो
0: जरूर,
1: सवाल ही नहीं, वो
0: बिल्कुल
1: ऑर्केस्ट्रा
0: बिल्कुल
1: बहुत सुंदर होता है। क्या
0: बिल्कुल।
1: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
1: हाँ
0: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
1: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
0: प्राइवेट
1: बार
0: शोज भी
1: जी, कंपनी के लिए
0: होते
1: या
0: थे
1: किसी।
0: कंपनी के लिए, किसी
1: हाँ हाँ
0: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
1: अच्छा
0: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्री से मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी,
0: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
1: अच्छा
0: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
1: जी
0: किया
1: जी जी
0: मुझे।
1: प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: सबका अपना अलग अंदाज होता
0: हाँ
1: है, अपना
0: जी
1: स्टाइल
0: जी
1: होता
0: जी
1: है।
0: एकदम
1: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया,
0: समझ,
1: सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
0: सही
1: उनकी
0: बात सही बात।
1: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
0: हाँ जी
1: शमशाद
0: हाँ जी
1: बेगम जी के
0: हाँ
1: प्रस्तुत,
0: जी हाँ
1: वो जो एक वहां से पूरा दौर अब आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
0: यूं
1: किन
0: कहूंगी
1: कंपोजिशंस में
0: कि
1: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ यही मैं कहने वाली थी कि
1: जी जी
0: पुराने जमाने के जो कॉम्पोजिशंस थे
1: जी
0: वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा
0: हाँ अभी
1: अच्छा
0: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: पुराने जो गाने थे
1: हाँ
0: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
1: हाँ
0: बीच का,
1: जी
0: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
1: हाँ समझ में आता
0: ऐसा चिल्लाते थे
1: है
0: जरा भी।
1: जी
0: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
1: अच्छा
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाच रही गाने,
1: जी जी
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ तो नंदुरवार करके गांव है छोटा
1: जी
0: सा दुलिया के पास,
1: जी
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ
0: था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
1: ओ
0: तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है,
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
1: तो श्रोताओं
0: वे
1: की समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाता है।
0: गाने
1: जी जी
0: बरोबर उनको ए
1: बिल्कुल
0: करके चिल्लाते थे वहां से।
1: हाँ, क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है,
0: वो
1: तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा।
1: हैं।
0: अभी ये
1: जी
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टर टर
1: हाँ
0: टर, वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी।
1: उनकी नजर से एक
0: हाँ
1: सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा करते
1: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से गाने के हिसाब से,
1: जी
0: इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ,
1: जी
0: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको
1: हाँ
0: गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
1: सिंह
0: होता,
1: हाँ
0: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था।
1: हाँ।
0: सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया।
1: हाँ।
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज।
1: हाँ।
0: चार साल से।
1: हाँ। हाँ।
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च

0: 23 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से तुमसे जो बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं। हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
1: बात।
0: जी तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस, संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी।
1: हाँ।
0: लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
1: जी।
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको, शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
1: विनय
0: मनके
1: जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्मर होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता।
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं, पड़वा के शो में, वसंतदा पाटिल, शंकरराव चौहान और जो कुछ, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पाली। सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा का आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसे भाव तुम्हें अशे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराया, पर गायला उभा रहा कसो करता, नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा लपिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: मसला बघून तुम्ही जाना हो पाऊन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाऊन, हो पाऊन पाऊन।

0: पाऊन जरा थांबा आर घे पडाला पिकलाय आंबा आलावाय पडाला पिकलाय आम हो नीट बघ पडाला पिकलाय आंबा कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया उनको भी शायद डाला।
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: गाती थी हाँ।
1: और अपनी लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वही गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: ये गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी है वो झबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट
1: हाँ।
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नवो पिक्चर लो गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर। इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी
0: बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी
0: जी,
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी,
1: होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पे पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की,
1: हाँ
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा,
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो वही गाने चाहिए लोगों
1: वाह
0: को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा आया आपकी बातों में और आपके अनुभव
0: हाँ
1: सुनकर
0: जी,
1: के।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, रूपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जी, क्या है आपके हाल? और उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया है। और बढ़िया क्यों नहीं हो भैया, वैसे भी गर्मी बहुत तेज़ है। और जब भी शाम का समय होता है ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी सी राहत जो है अब हमें मिलने वाली है। और यही राहत हम भी लेकर आते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी। आज आपके साथ मैं हूँ आपका रेडियो रागी रोहित, और आज मेरे साथ है
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज की शाम, सैटरडे की शाम, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती। देश दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली राजस्थान की क्या कुछ खास खबर, क्या खास
0: बिल्कुल।
1: बात, और युवाओं को लेकर क्या कुछ चीज़ें हो रही है इस वक्त, पूरी जानकारी आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। रेडियो बडीज दो, इस आवाज़ का नाम राहुल, और हमारे साथ हैं,
0: मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो रागी रोहित।
1: पढ़ते हैं आगे, सुनते हैं आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: बिल्कुल जी, और इस बेहतरीन गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। शाम का समय हो चुका है और आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम युवाणी। और राहुल, बात कर रहे थे हम ना गर्मी की, अभी देखा जा रहा है तो जोधपुर का, राजस्थान में जो टेम्परेचर है, और राजस्थान का और जोधपुर की स्पेशली बात करें तो 40 डिग्री से 45 डिग्री तक के बीच टेम्परेचर जो है वो पहुँच रहा है। और भैया सबकी हालत ना एकदम फुल पसीने वाली कर
1: फुल
0: रहा है।
1: पसीने वाली हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, इतना टेम्परेचर तो मतलब भाई जब एग्जाम में कम नंबर आते थे ना तब पिताजी का भी नहीं होता था, उससे कहीं ज्यादा हो जाए। फिलहाल
0: बिल्कुल
1: आज
0: बिल्कुल
1: हमारे बाहर मौसम हो रखा है और सूरज देवता बराबर अपने छाए हुए हैं, प्रकोप बराबर बरसा रहे हैं लोगों पर। लेकिन आपको जो है वो हर चीज से बचना है, अपने आप को जो है वो पानी पीते रहना लगातार, और अपने के साथ साथ अपनों का भी ख्याल बराबर रखना है।
0: बिल्कुल, अगर आपको बाहर आप कुछ काम कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि बहुत पसीना हो रहा है तो भैया फटाफट से पसीना साफ करते रहिए, क्योंकि अभी जो फंगल इन्फेक्शन है, स्किन से जुड़ी हुई जो डिजीज है वो भी काफी सारी फैल रही है, और उसके भी बहुत सारे खतरे हैं कि फंगल इन्फेक्शन आपको कहीं ना कहीं पे हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो उस जगह को जो है वो थोड़ा सा पोंछ लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए।
1: फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ और भी कई सारी बीमारियां हैं जो इस गर्मी में आपको लग सकती है, लेकिन उससे आपको बचाव करना, जैसा ये लू बचना है जो
0: बिल्कुल
1: हमारे एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अगर इससे आपको बचना है तो ठंडी हवा में जो है वो ये कोशिश करें कि आप जो सफर है वो या तो मॉर्निंग में करें या
0: या
1: फिर
0: फिर इवनिंग में,
1: इवनिंग में करें।
0: बिल्कुल
1: दोपहर के टाइम में जो है वो सफर करने को अवॉइड करें।
0: बिल्कुल। और ये कुछ बातें हैं।

0: आप इनका ध्यान रखेंगे, और अगर इन बीच में कोई भी इन्फेक्शन आपको दिखता है, खुजली दिखती है या फिर ऐसा कुछ भी दिखता है, तो घर आके आप ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से, ऐसा नहीं कि बर्फ डाल दें उसमें, नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हैं, और डॉक्टर की जो सलाह है वो
1: बिल्कुल उसे
0: बहुत
1: ले सकते
0: जरूरी होती
1: हैं।
0: है जीवन में, वो आप ले सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, मैं हूँ आपके साथ रोहित, और मेरे साथ है
1: जय बिल्कुल, इस आवाज का नाम राहुल। और बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने, अगला ट्रैक म्यूजिकल ट्रैक आपकी नजरिए रहा साहब।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और भैया एक जो है बैड न्यूज़ थी, जितने लोगों जो है नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था उनको पता चला था कि परीक्षा जो है वो रद्द हो गई, और उसके बाद में जो है उनका स्ट्रेस लेवल जो है एकदम हाई पे पहुंच गया था। और वो हमेशा वो सारे स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि नई डेट जो है, नई एडवाइजरी जो है कब आएगी। और फाइनली जो सरकार है उन्होंने जो नई डेट है वो बता दी है, जो कि रहेगी 21 जून 2026, यानी कि जो री एग्ज़ामिनेशन है वो 21 जून को होंगे, और इनके जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून से जारी हो जाएंगे। तो आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे 14th के बाद में, और 21st जून 2026 जो है आपका री एग्ज़ामिनेशन डेट रहेगा।
1: बिल्कुल रहेगा, और इसमें कई सारे छोटे छोटे बदलाव हैं जो कि एक हफ्ते की विंडो देकर आपको दोबारा जो है वो परीक्षा का शहर चुनने का मौका मिलेगा, और ज़रूरत पड़ने पर सेंटर बदलने का विकल्प भी आपको दिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में 15 मिनट का आपको जो है वो समय अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा मिलेगा, 15 मिनट का टाइम आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। यात्रा की अगर बात करें तो केंद्र राज्य सरकारें मिलकर छात्रों के परिवहन की व्यवस्था करेगी, और मौसम व दूरी को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम भी जो है वो इस परीक्षा को लेकर किए जाएंगे। तो भाई नीट यूजी की परीक्षा के जो छात्र हैं जिनको प्रेशर था, स्ट्रेस था, कुछ न कुछ टेंशन चल रही थी दिमाग में कि भी क्या होने वाला क्या नहीं, भैया आप रखिए अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी।
0: बिल्कुल, और एक बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि जो फीस आपने सबमिट करवाई थी वो वापस आपको रिटर्न हो जाएगी, और ये जो री एग्जामिनेशन होंगे इसकी फीस जो है वो नहीं लगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है निःशुल्क रहेगा, और इसके जो आपने पहले एग्जाम की जो भी फीस सबमिट करी थी वो वापस आपको
1: बिल्कुल
0: मिल
1: जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। फिलहाल आप और मिलकर पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे मजेदार से गाने। प्रोग्राम ऑन।

0: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से इस वक्त प्रोग्राम यमुने को एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और मेरे साथ हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ रोहित।
0: और भैया, बात चल रही है परीक्षाओं की, तो परीक्षा में एक और परीक्षा का जिक्र हम कर लेते हैं। जिनका स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर की, जिन लोगों ने परीक्षा दी थी 2021 में, उनके लिए अपडेट आ चुका है नया। 30 मई तक जो है वो अब संशोधन होंगे फॉर्म में, और जो पुनः इसकी परीक्षा की डेट है जो 2021 में हुई थी उसको रद्द कर दी गई, और इसके बाद अभी जो पुनः परीक्षा होगी वो होगी 20 सितंबर को। इसमें पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में केवल वही स्टूडेंट जो है वो शामिल हो सकेंगे। उनके लिए स्पेशल बात है, जिन्होंने इस 2021 वाली परीक्षा में दोनों पेपर में जो लोग अटेंड रहे थे, जिनकी जो अटेंडेंस है दोनों पेपर में रही थी, वही जो है इस परीक्षा के लिए अनिवार्य होंगे।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ जिन लोगों को संशोधन नहीं करना है, जिनको लगता है कि सारी जो डिटेल्स है वो एकदम सही है, फिर भी उनको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए आप कर सकते हैं कि एडिट मोड में जाकर के आपको अपना जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, साथ साथ में आपको लाइव फोटो भी वहाँ पर क्लिक करवानी होगी, और अपने अंगूठे यानी कि फिंगरप्रिंट्स भी आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे, और ये सब देने के बाद में फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे OTP प्राप्त कर करके भी आपको वहाँ पर OTP जो है डालना पड़ेगा। इससे ही आपका जो पूरा फॉर्म सबमिशन है वो पूरा होगा। अगर आपको उसमें कोई भी संशोधन नहीं करवाना है, उसके बावजूद भी आपको अपने आप को वहाँ पर वेरीफाई करवाना ज़रूरी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ना राहुल, कई लोगों ने जो है SSO ID जो होते हैं वो बदल दिए होते हैं, तो उसके लिए भी अगर आपने SSO ID बदल दिया है तो आप नई SSO ID बना करके अपना जो पुराना फाइल का डेटा है वो भी फेच कर सकते हैं, जिससे कि जितनी भी डिटेल्स आपने अपनी पुरानी SSO ID में सबमिट करी थी, जो भी सारी डिटेल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी और वो सीधी आपके नई SSO ID पर आ जाएगी। तो SSO ID बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो आप उसके पासवर्ड, आप अपनी SSO ID का यूज़र नेम भी संभाल कर रखें, वो सब भी ध्यान रखें, और अगर कोई संशोधन नहीं है तो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना।
0: जी बिल्कुल सही बात करी आपने, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो 2021 में हुई थी और फिलहाल चल रहा है 2026, तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आ रही है कि भैया हमारी उस वक्त SSO ID अलग थी, अब अलग है, तो वो फैच एप्लीकेशन फॉर्म का विवरण उपयोग कर पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पुराने आवेदन और रिकॉर्ड की पूरी जानकारी जो है आपके नए सिस्टम से वापस जुड़ जाएगी। तो ये थी SI भर्ती 2021 की जानकारी, जो कि अब 20 सितंबर को इसकी पुनः परीक्षा होने वाली है। फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने प्रोग्राम रिवाणी ऑन हिसाब।

0: राहुल, एक बात करने वाली बात हो गई कि भैया जो हेल्दी लाइफस्टाइल से तो हम सब लोग बोलते हैं कि हेल्दी रहना चाहिए और वो रहना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम चेंज करते हैं ना तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे घुली हुई है कि हम कितना भी कर लें लेकिन उनसे हम बच नहीं सकते। और उनमें से सबसे मेन चीज़ हो गई माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स अगर हम देखें तो पानी की बोतल में भी मिल जाते हैं, अगर हम चाय पीने कहीं जाते हैं तो वो छोटे जो कप मिलते हैं डिस्पोजल
1: डिस्पोजल
0: कप्स
1: कप।
0: उनमें भी हमें मिल
1: हाँ
0: जाते हैं। आजकल जहाँ पर भी हम फास्ट फूड खाने जाते हैं तो हमको ना प्लास्टिक के बर्तन दे दिए जाते हैं या फिर थर्माकोल की प्लेट्स हमें दे दी जाती है, तो उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमें भर भर के मिलता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा करके वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता ही करता है।
1: जी बिल्कुल करता है। और इससे बचने के लिए इसके ऊपर बिल्कुल तीन लोगों ने काम किया है, तीन किशोर देश के, जिन्होंने छात्रों ने इमली के बीज से एक ऐसा पाउडर बना दिया है जो पानी के माइक्रोप्लास्टिक को हटाने में मदद करेगा। और इस खोज के लिए उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया, द अर्थ पुरस्कार 2026 एशिया का इनको विजेता चुना गया है।
0: बिल्कुल, पानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स में और ऐसी कई लिक्विड वाली जो चीज़ होती है जैसे कि पानी के टंकी, और उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक बहुत सारे होते
1: ऑब्वियस
0: हैं और
1: ऑब्वियस होते हैं,
0: वही हम
1: मिलते ही
0: लोग
1: हैं वो
0: कंज्यूम
1: तो।
0: करते हैं। और बिल्कुल, द अर्थ पुरस्कार 2026 इनको दिया गया, मैंने भी सुना था। और इनके नाम है, इनमें से तीन जो है वो एक 16 वर्ष का विवान छावछारिया है और अरियाना अग्रवाल है और आव्याना मेहता। इन्होंने एक प्लास्टिक नाम का एक प्राकृतिक पाउडर जो है वो इन्वेंट किया जो कि पानी के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको आपस में जोड़ती है और एक बड़ी बॉल या एक बड़ा गुच्छा जो है वो बना देती है जिससे बाद में हम मैग्नेट से या फिर किसी भी अलग यंत्र से हटा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ईजी चीज़ रहेंगी कि छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको ढूंढना ही बहुत बड़ी
1: बड़ी
0: बात
1: बात
0: होती
1: हो
0: है, उनको
1: जाती
0: देखना
1: है।
0: ही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से ही हमें दिखते हैं। लेकिन उनका एक बड़ा बॉल या फिर उनका एक गुच्छा अगर हम बना दें तो ह्यूमन आई जो है हम भी अपनी इंसानी आंखों से देख सकते हैं और उसे हटाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे इनको जो है $1,00,000 यानी कि 96 लाख रुपीज भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने वाली है। और आगे जाकर के इस टेक्नोलॉजी को ये और अच्छा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें फिर एकदम ईजिली हर एक जगह पर देखने को मिले और शायद इससे हमारी जो सेहत है वो थोड़ी सी और सुधर सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये हमारे लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे भारत के बच्चों ने जो ये आविष्कार किया है,
0: बिल्कुल
1: ये हमें गर्व करने की बात है। और ऐसे आविष्कार करते रहें। और फिलहाल प्रोग्राम यूवन चल रहा है, मज़ेदार से गाने हैं और मज़ेदार सी बातें और भी बाकी हैं। और बताएंगे आपको बातें क्या कुछ खास आज के प्रोग्राम में, बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जी, स्वागत है आपका, वेलकम बैक है जो एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप। और फिलहाल बात करें युवाओं की, तो युवाओं में सोशल मीडिया का कल्चर अभी फिलहाल पीक पर चल रहा है। हर किसी के पास अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट है और उसे हैंडल कर रहा है, किसी न किसी तरीके से कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहा है। कुछ लोगों के तो ये कमाई का साधन भी आजकल ये बन चुका है। और ऐसे में क्या है कि सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ न कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। तो आज क्या नया अपडेट है रोहित, बता दो हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यूथ के बीच में ही नहीं, सारी जनरेशन के बीच में एक अहम हिस्सा बन गया उनके जीवन का। और इस बीच में काफी लोग जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम से। और इसी बीच में ना इंस्टाग्राम जो स्पेशली ऐप है जो मेटा है, उन्होंने एक बोल सकते हैं कि जो जितने भी फेक अकाउंट होते हैं वो सिक्योरिटी के पर्पज से, जितने भी फेक अकाउंट है या जितने भी ऐसे अकाउंट है जो कि बहुत टाइम से काम नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें वो सस्पेंड कर रहा है। सस्पेंड मतलब उन्हें वो डिलीट कर रहा है, उन्हें वो हटा रहा है,
0: ऑटोमेटिकली।
1: जो बिल्कुल जो फेक अकाउंट्स है। इस बीच में कई ऐसे अकाउंट है जो है तो रियल, जो रियल जो पर्सन है वही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है उनके ऊपर, तो उनके भी जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो रहे हैं। और इस बीच में ना कई सारे जो ब्लॉगर्स हैं उनके भी अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, उनके भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। और अगर आपको भी ये डर सता रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं हो जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं, और वो ये है कि आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर जाएं, उसे ओपन करें, और जहाँ पर आपकी छोटी सी प्रोफाइल आपको दिखती है उस पर क्लिक करके अकाउंट सेक्शन में आप जा सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपको तीसरे या चौथे नंबर पर सेल्फी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर करवा रखा है उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी उसके अंदर सबमिट करें, और इसके बाद में वह आपको सेल्फी क्लिक करने के लिए कहेंगे, तो आप उसमें अपना सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। और लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा, और उसके बाद में आपके अकाउंट के सस्पेंड होने की जो चांसेस हैं वो 100 से एकदम 0 हो जाएगी।
0: देखा, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सोशल मीडिया का बहुत अच्छा खासा यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा ये अकाउंट है जो बना रहे, मैं इसे और भी चलाना चाहता हूँ, तो ये जो काम है आप एक बार ज़रूर कर लें जब भी फ्री हो। 5 मिनट का प्रोसेस है, आप उस चीज़ से बच जाएंगे कि इंस्टाग्राम को ये तो नहीं लगेगा कि भाई इसका अकाउंट जो है वो फेक है, ये बंदा रियल है। फिलहाल प्रोग्राम युवाणी जा रही है, और भी मज़ेदार सी बातें आना बाकी है, बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मज़ेदार से गाना। अगला म्यूजिकल ट्रैक आपकी नज़र, येरा साहब।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी, और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो राहगीर रोहित, और आज मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल इस आवाज का नाम राहुल।
0: बिल्कुल, और आज ना राहुल बहुत स्पेशल डे है। आज स्पेशल इसलिए क्योंकि आज ना राष्ट्र डेंगू दिवस है, यानी कि वो दिन जब हम सब मिलकर मच्छरों को साफ संदेश देते हैं कि भाई साहब हमारा खून फ्री वाईफाई नहीं है। तो अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जानकारी भी होगी, मस्ती भी होगी और जागरूकता भी।
1: दोस्तों, आपने नोटिस किया ही होगा ना कि यार मच्छर दुनिया का वो सबसे कॉन्फिडेंट जीव है। ना इसे सिक्योरिटी का डर है, ना थप्पड़ का कोई असर है, और ना ही रात को 2 बजे परेशान करने की कोई भी शर्म इसके नाम है।
0: बिल्कुल, लेकिन मजाक अपनी जगह है। डेंगू फैलाने वाले एडिम मच्छर काफी खतरनाक होते हैं। ये साफ पानी में पनपते हैं और दिन में काटता है।
1: इसलिए अगर घर में कहीं भी पानी जमा है तो समझ लीजिए मच्छरों ने अपना 1 BHK फ्लैट वहां बुक करा दिया है, कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: लेकिन
1: तो
0: राहुल इससे जो सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हमें बोलते हैं ना, जो हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो यही रहती है कि कहीं भी पॉट होल्स, मतलब जो गड्ढे आपको दिखते हैं जहां पर पानी भर गया है, तो आप उन्हें

0: चीज़ें खाली कर सकते हैं। अगर आपके घर की छत पर ऐसा कोई बर्तन पड़ा है जिसमें बारिश की वजह से ही सही लेकिन पानी भरा हुआ है, तो आप उसे खाली करके रख सकते हैं, एकदम सूखा रख सकते हैं, उसे धूप में रख दें, सूख जाएगा क्योंकि गर्मी वैसे भी बहुत तेज़ चल रही है अपने यहाँ पर। और साफ़ पानी अगर हम, जैसे कई लोग होते हैं ना, वॉशरूम के अंदर बाल्टी भर के रख देते हैं या फिर किचन के अंदर भी बाल्टी भर के रख देते हैं या पानी के बर्तन हम भर के रख देते हैं, तो भरने के तुरंत बाद उन्हें अगर हम ढक के रखें तो मच्छर जो है उनके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट मच्छर है
1: देखो,
0: ये।
1: मच्छरों के लिए ना आप एक हॉटस्पॉट की तरह हो, और आपका
0: बिल्कुल
1: पासवर्ड उन आपके पास रखा हो, भरा हुआ पानी, वो जमा पानी है। अगर
0: बिल्कुल
1: वो देख लिया, अगर हॉटस्पॉट के पासवर्ड उसने देख लिए, वो जमा पानी देख लिया, तो
0: बिल्कुल।
1: आपसे कनेक्टिविटी
0: और
1: कर
0: इनके
1: लेगा।
0: लिए
1: और
0: खास बात यह है कि बहुत स्मार्ट मच्छर है ना, तो साफ पानी ढूंढते हैं कि भैया एकदम साफ पीने
1: वहीं
0: योग्य
1: पनपते
0: पानी कहाँ है,
1: हैं।
0: हम लोग तो वहीं अपना डेरा जमाएंगे साफ
1: हाँ,
0: जगह पर
1: इनका
0: रह
1: वन बीच
0: करके।
1: का फ्लैट वहीं है।
0: बिल्कुल, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप कहीं बाहर जाएं और आपको लगता है कि आसपास मच्छर बहुत ज्यादा है, तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं, फुल लेंथ की पैंट जो है वो कैरी कर सकते हैं, मुंह पर आप स्कार्फ या रुमाल से जो है चेहरा
1: अपने
0: आप
1: आप
0: ढक
1: को
0: सकते
1: कवर
0: हैं,
1: कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: जितना ज्यादा बॉडी एरिया आपका ढका रहेगा उतना ज्यादा जो है मच्छरों को ढूंढने में टाइम लगेगा, और वो सोचेंगे भैया कहाँ काटे, इतने में तो आप वहां से रफुचक्कर हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मच्छर आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सो आज विश्व डेंगू दिवस यानी कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज है।
1: और इसलिए डेंगू दिवस के ऊपर मौके पर डेंगू को भी विश्व राष्ट्र दिवस की बहुत बहुत
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सेफ्टी
1: शुभकामनाएं।
0: मेजरमेंट्स आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और थोड़ा सा भी कुछ हो, आपको लगे कि मच्छर ने काटे, तो फटाफट से जाकर के डॉक्टर से जो है वो सलाह ले लीजिएगा। थोड़ा सा घर पे ही जो घरेलू नुस्खे आजकल होते हैं वो काम करना बंद कर गए हैं, क्योंकि जो डेंगू है, जो ये मच्छर है, इन्होंने जो है इनका एंटीडोट ढूंढ लिया है, तो आप सिर्फ घरेलू नुस्खों की बजाय डॉक्टर के पास ही जाइएगा।
1: देखो, जैसे आप हमारा शो सुन रहे हो डेंगू मच्छर से बचाव के उपकरण, आप भी सुन रहे हो कि भी किस तरह से बचाव कर सकते हो, तो याद रखिए डेंगू भी कहीं ना कहीं सुन रहा होगा, वो भी कोई
0: बिल्कुल
1: नए तरीके निकाल रहा होगा, तो आप अपने आप को जरूर सेफ रखें। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी जोन, आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वेलकम बैक जी। और भैया देखिए, अब युवाओं का कार्यक्रम है और राहुल, अगर हम आईपीएल की बात नहीं करें, क्रिकेट मैच की बात करें नहीं करें, तो फिर भैया नहीं चलेगा। तो फटाफट से जो है क्विक क्रिकेट अपडेट आप हमारे और लिसनर्स को दे दीजिए।
1: क्विक क्रिकेट अपडेट की बात करें तो फिलहाल चल रहा है इंडिया का त्यौहार, जिसे कहते हैं आईपीएल और इंडियन प्रीमियर लीग। ये फिर एक लीग नहीं है, सिर्फ एक त्यौहार के बराबर है। जैसे ही शाम के 7:30 बजते हैं, जो व्यूवरशिप है वो अपने आप इतनी बढ़ जाती है, लगता है कि यार इतने लोग पैसा वाते कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं ये लोग। तो फिलहाल बात करते हैं पॉइंट टेबल्स की। तो आरसीबी टेबल टॉप पर बनी हुई है, जीटी सेकंड नंबर पर है फिलहाल, एसआरएच थर्ड नंबर पर है और पंजाब किंग्स चौथे नंबर पर चल रही है। जद्दोजहद अभी भी बरकरार है। आरसीबी और जीटी का कुछ मुकाबला लग रहा है कि क्या पता शायद इनका तो प्लेऑफ में आना कन्फर्म ही दिखाई दे रहा है। बात करें एसआरएच की, एसआरएच की बैटिंग जब शुरू होती है ऐसा लगता है कि जोधपुर की कोई लू है, मतलब बैटिंग करते हैं धुआंधार, पूरी खतरनाक बैटिंग करते हैं और पॉइंट लेकर पसीने छुड़ा देते हैं। और फिलहाल आज का मैच भी कुछ खास रहने वाला है, और आज का मुकाबला जीटी और केकेआर के बीच में है। जीटी का रास्ता तो साफ हो ही जाएगा, अगर आज का मुकाबला जीत जाते हैं तो प्लेऑफ की रेस में इनका नाम पक्का दर्ज हो जाएगा, इनकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। लेकिन केकेआर की हालत फिलहाल खस्ता है, इनके लिए इंतजार है अगली आईपीएल का, इनको अब इनकी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। और फिलहाल आरसीबी, जीटी, एसआरएच, पंजाब किंग्स, सीएसके, आरआर, ये चीजें जो है वो रेस में बिल्कुल बनी हुई हैं। क्या पता देखते हैं किसका नंबर आता है, टॉप फोर में कौन सी टीम आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आईपीएल अभी थोड़ा और बाकी है, लंबा चौड़ा और मस्ती मजाक बाकी है। शाम के 7:30 बजते आप भी अपनी टीवी अपने मोबाइल फोन के आगे जरूर पे चिपके जाते, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं। और गानों का सिलसिला जारी रहेगा, प्रोग्राम युवाणी फिलहाल चल रहा है।

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे थे युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, और समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिलहाल आपके साथ दो रेडियो बडीज थे, मैं था आपके साथ आपका रेडियो राजू रोहित, और आज मेरे साथ थे
1: जी बिल्कुल इस आवाज का नाम राहुल। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें करी है, डेंगू डे के बारे में जाना, IPL अपडेट के बारे में जाना, बहुत सारे युवाओं से जुड़ी हुई एग्जाम को लेकर क्या कुछ खास बात है और उसके बारे में जाना, और आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन रहा राजेश लामरोड का, कंसोल पे हमारे साथ पद्मिनी, और हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और

0: उत्पाद विकास प्रमुख पीयर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैश में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर पेशे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

दोस्तों कार्यक्रम का आगाज करता हूँ गालिब के शेर से कि चिरागों से न पूछ कि बाकी तेल कितना है, न सांसों से पूछ कि बाकी खेल कितना है। पूछना है तो कफन में लेटे इंसान से पूछ कि अमाल जिंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। नमस्कार, मैं हूँ लियाकत अली और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाजों में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अब बस ये था फिल्म का नाम, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आप ये सुन रहे थे गीत।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आपने तुम बिन फिल्म का गीत सुना, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए

फौजी भाइयों नमस्कार। इससे पहले भी हम कई बार मिले हैं, बल्कि बार बार मिले हैं, कभी तपते हुए रेगिस्तानों में, कभी बर्फ से ढके पहाड़ों पर। और मैंने खुद देखा है जिंदगी की हर राह में, हर मोड़ पर, हर मंजिल पर आप आजादी की हिफाजत कर रहे हैं, वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कई बार सोचा कि आपसे आपका नाम पूछूं, फिर ख्याल आया सैनिक का तो एक ही नाम होता है, सैनिक। वो तो सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ता है, वतन के आजाद गुलशन में खिले फूलों और गुंचों की हिफाजत करता है।

फौजी भाइयों, देश की सीमाओं पर मैं आपको कई बार मिला, आपका मनोरंजन किया, वो यादें अब भी मेरे दिल में ताजा हैं। चंद साल हुए किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया कि वो हमारे साथ अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में आकर आपका मनोरंजन करें। किशोर कुमार साहब इससे पहले स्टेज पर नहीं गाते थे, खैर हम लोग

फौजी भाइयों, देश की सीमाओं पर मैं आपको कई बार मिला, आपका मनोरंजन किया, वो यादें अब भी मेरे दिल में ताजा हैं। चंद साल हुए किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया कि वो हमारे साथ अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में आकर आपका मनोरंजन करें। किशोर कुमार साहब इससे पहले स्टेज पर नहीं गाते थे। खैर, हम लोग नथुला और गैंगटॉक के बीच बर्फ से ढके हुए एक पहाड़ी कैंप में पहुंचे। हमारे पहुंचने के बाद ही देखते देखते सैनिकों ने लकड़ी का एक स्टेज बनाया और खुद बर्फ पर पलती मारकर बैठ गए। प्रोग्राम शुरू किया तो किशोर साहब स्टेज पर गाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि होंठ मैं हिलाऊंगा और स्टेज पर मेरे पीछे खड़े होकर वो गाएंगे। खैर, गाना शुरू हुआ और कुछ ही देर के बाद मैं होंठ हिलाते हिलाते किशोर साहब के सामने से हट गया। किशोर साहब बहुत चिल्लाए मगर तालियों की गूंज ने उन्हें गाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह फौजी भाइयों, किशोर साहब की शर्म का घूंघट आप ही के सामने पहली बार उठाया गया। और आपको याद है वो गाना कौन सा था और कौन सी फिल्म का था? पड़ोसन का। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।

लद्दाख से दम पे दम भरते हुए हम सब दिल्ली आए, गांजे का दम नहीं, फौजी भाइयों के प्यार का दम। दिल्ली पहुंचकर हम सीधे पंडित नेहरू जी के बंगले पर गए उन्हें सलाम करने। उन्हीं दिनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए एक अमेरिकन टीम आई थी। पंडित जी ने उनसे मिलवाया और कहा कि ये हैं हमारे फिल्मी माउंटेनियर्स, अभी लद्दाख से आए हैं फौजी भाइयों का मनोरंजन करके। और फिर पंडित जी ने फरमाइश की कि वही गाना गाकर सुनाओ जो हमारे जवानों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। लीजिए, यह है वो गाना।

0: फौजी भाइयों, आपसे आपकी बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस वक्त भी आपके दरमियान हूं। तो अब जरा बर्फीली चोटियों से उतरिए और बरेली के बाजार में तशरीफ लाइए।
1: झुमका गिरा रे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: करते थे, उनके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे, गरीबी महामारी की तरह फैली हुई थी, मगर कोई भी राजपूत अपना गांव अपनी धरती छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था, और न ही गरीबी से तंग आकर कोई भीख मांगता हुआ दिखाई देता था। उस वक्त मुझे लगा ये भी एक जंग है, कुदरत के साथ जंग, गरीबी के साथ जंग, हालात के साथ जंग, और इनकी जिंदगी मसलसल एक जंग है। ये भी बहुत बड़े सैनिक हैं, भगवान करे राजस्थान की उस तपती हुई रेत पर बादल झूमे, सावन बरसे।

फौजी भाइयों, अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बल्कि फिल्मी दुनिया के बहुत से कलाकार जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो सब हैं। उन्हीं कलाकारों के साथ हम एक बार जम्मू में आपका मनोरंजन कर रहे थे कि अचानक खबर आई मीना कुमारी जी का इंतकाल हो गया। फौरन एक आर्मी ऑफिसर ने स्टेज पर आकर इस खबर का ऐलान किया और उसी समय ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। सारे फौजी हमारे गम में बराबर के शरीक थे और शेर और नगमे की वो जमी हुई महफिल मीना जी की याद में डूब गई। हर जबान पर उनका नाम था, हर दिल में उनका ख्याल था और मैं एक कोने में खड़ा सोच रहा था, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।

0: फौजी साथियों, फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
2: जीवन
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
2: देव आनंद
4: फौजी भाइयों, अपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
2: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला, हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

एक वाकया मुकेश भाई का भी याद आया। उन दिनों उन्हें पहली बार हार्ट अटैक हुआ था और हम लोग कहीं प्रोग्राम करने जा रहे थे। मुकेश भाई भी चलने को तैयार हो गए। मैंने कहा, मुकेश भाई सफर लंबा है, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मुकेश भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो, जवानों को खुश करने में मुझे कभी और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो वो हमारे साथ गए और अपनी आवाज से जवानों के दिलों को गर्माते रहे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: अच्छा फौजी भाइयों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा, आइंदा जब भी आप याद करेंगे मुझे अपने करीब पाएंगे। नमस्ते।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्मकार सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप हैं विविध भारती के संग।
2: जिज्ञासा
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल फर्जी सिम कार्ड की समस्या बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके आपके नाम पर सिम ले लेते हैं, बाद में उस सिम से कोई गलत गतिविधि होती है तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति के पास पहुंचती है। ऐसे में बेवजह पुलिस केस में नाम आने से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप चेक करते रहें कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। भारत सरकार ने इसके लिए संचार साथी नाम का एक पोर्टल बनाया है। ये पूरी तरह से फ्री और सुरक्षित तरीका है। जिज्ञासा कार्यक्रम में आज हम आपको बता रहे हैं कि संचार साथी में कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें और लिखें sanchar.sathi.gov.in या लिखें sanchar.sathi.gov.in। संचार साथी की स्पेलिंग है sanchar.sathi, sanchar.sathi.gov.in या sanchar.sathi.gov.in। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चुनना है नो योर मोबाइल कनेक्शंस या कनेक्टेड मोबाइल नंबर्स। वहां अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, ओटीपी आएगा उसे डालें, स्क्रीन पर आपके नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर दिख जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो कि अनजान हो, जो आपने कभी नहीं लिया, तो तुरंत उसी पोर्टल पर रिपोर्ट फ्रॉड या ब्लॉक कनेक्शन का ऑप्शन चुनें और इस तरह से आप उस सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल पर सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सेक्शन यानी CEIR सेक्शन में जाना है। वहां फर्जी नंबर की शिकायत दर्ज करना है। जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आधार और फोटो हो सकते हैं, उन्हें अपलोड कीजिए, कुछ ही घंटों में ये नंबर ब्लॉक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब झंझट करने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम कार्ड चल रहा है और कोई ठगी हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस आपके पास आएगी। इसलिए जरूरी यह है कि आप हमेशा चेक करते रहें कि आपके नाम पर कोई गलत सिम कार्ड तो नहीं चल रहा। बैंक अकाउंट UPI आधार से लिंक होने पर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, अब इससे जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएं। कम से कम 3 महीने या 6 महीने में एक बार हर व्यक्ति के लिए ये चेक करना जरूरी है कि आपके नाम पर कोई अनजान नंबर तो नहीं चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी आप अपने आधार कार्ड की कॉपी कहीं सबमिट करते हैं तो उस कॉपी को साइन करते हुए वहां लिखें फॉर गैस कनेक्शन, फॉर होटल बुकिंग, या किसी अनजान आदमी को आधार कार्ड कतई ना दें, ना ही उसकी कॉपी दें। अगर सिम ले रहे हैं तो खुद मौजूद रहें, किसी और व्यक्ति को सिम लेने के लिए ना भेजें। अगर कोई फर्जी नंबर मिले तो तुरंत ब्लॉक करें और पासपोर्ट साइज फोटो के

साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रहे संचार साथी.gov.in पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं।

राजस्थान के जैसलमेर शहर में इस हफ्ते तापमान 51 डिग्री पहुंच गया। जाहिर है कि ये भयानक गर्मी है, भीषण गर्मी है। ऐसे में लोग एयर कंडीशन पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि क्या 51-52 डिग्री तक की जो गर्मी है उसमें एसी कुछ कर सकता है। दरअसल एसी तकरीबन 52 डिग्री तक ही कूलिंग कर पाता है, और उसके आगे क्या? ज्यादातर एयर कंडीशनर बाहर 50 या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो ठीक से काम करते हैं, पर तापमान इससे ऊपर हो तो एसी की कूलिंग क्षमता जवाब देने लगती है। इसका कारण यह है कि एसी बाहर की गर्म हवा से अंदर की गर्मी निकालकर ठंडी हवा बनाता है। जब बाहर का तापमान 51-52 डिग्री हो जाता है, जैसा जैसलमेर में हुआ, तो एसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए कमरे का तापमान 28 से 30 डिग्री से नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसी लगातार चलता है लेकिन ठंडक कम मिलती है, बिजली का बिल बढ़ता चला जाता है, या फिर एसी जल्दी गर्म हो जाता है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 50 डिग्री से ऊपर के तापमान में एसी के काम करने की काबिलियत 30-40% तक कम हो जाती है। अगर आपने एसी को 24 डिग्री पर सेट किया है, 24 डिग्री पर, तो आपका कमरा 30-32 डिग्री से ज्यादा ठंडा नहीं होगा। कुछ मामलों में एसी केवल हवा फेंकता रहेगा लेकिन आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एसी का तापमान आपको सेट करना है 26 से 28 डिग्री पर, यानी 20 से 22 डिग्री पर एसी नहीं रखना है। इससे एसी पर दबाव कम पड़ेगा और आपकी बिजली भी बचेगी। दूसरी बात, अगर भीषण गर्मी पड़ रही है तो एसी की नियमित सर्विस करवाएं। गर्मी से पहले और बीच बीच में एसी की अच्छे से सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि गंदा फिल्टर, ब्लॉक कॉइल्स एसी के परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। घर को गर्मी से बचाएं, दिन में पर्दे बंद रखें, छत पर व्हाइट रिफ्लेक्टिव पेंट करवाएं ताकि गर्मी छत में समा न जाए। रात में खिड़कियां खोलकर क्रॉस वेंटिलेशन करें, कूलर का भी इस्तेमाल करें, यानी पहले कूलर के जरिए आप इस कमरे को ठंडा कर सकते हैं, उसके बाद एसी चलाएं। इन्वर्टर एसी का बहुत बड़ा फायदा होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी ज्यादा गर्मी में भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिज्ञासा में पिछले हफ्ते भी हमने आपसे कहा था और इस हफ्ते भी हम कह रहे हैं कि इस गर्मी में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हो पानी पिए, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, दोपहर में जहां तक मुमकिन हो बाहर निकलने से बचे। और अब जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको हंटा वायरस के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। अटलांटिक महासागर में होंडियस नामक क्रूज शिप पर 7 लोगों के बीमार पाए जाने और 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इसका कारण है शिप पर संदिग्ध हंटा वायरस का फैलना। दरअसल जहाज में तकरीबन 150 यात्री और इसके अलावा चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हंटा वायरस से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद ये जहाज अब स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ जा रहा है। यहां मरीजों को मेडिकल मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि केप वर्डे इस ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कैनरी द्वीप इसके सबसे नजदीक है और यहां ज्यादा सुविधाएं हैं, इसलिए इन लोगों की मदद करना स्पेन का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। सवाल यह है कि ये हंटा वायरस कैसे फैलता है। ये जो नाम है ये कोरियाई नदी हंतान से लिया गया है। दरअसल 1950 के दशक में कोरिया के इस इलाके में कई सैनिक इस वायरस से बीमार हुए, लेकिन सन 1977 में पहली बार इस वायरस की पहचान हुई। हंटा वायरस वायरस का एक ऐसा समूह है जो आमतौर पर चूहों और उनकी प्रजातियों में पाया जाता है। अगर ये इंसान में फैल जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल इसके संक्रमण से 10,000 से 1,00,000 तक लोग प्रभावित होते हैं। हंटा वायरस संक्रमित चूहों के लार, मूत्र और मल के जरिए बाहर निकलता है। जब यह पदार्थ सूखकर धूल बन जाता है और हवा में उड़ता है तो सांस के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और फिर यही वायरस

इंसान के शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है और अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। हंटा वायरस कई तरीकों से इंसानों में फैलता है, खासकर जब कोई इंसान बाहरी गतिविधियों के दौरान चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आता है, जैसे बागवानी करते, लकड़ी काटते, जॉगिंग करते हुए, या फिर इसके अलावा इसका खतरा ऐसे इलाकों में ज्यादा होता है जहां चूहों की संख्या ज्यादा हो। आमतौर पर इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन कभी कभी जब लंबे समय तक लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तब ऐसा जरूर होता है। यही कारण है कि इसका संक्रमण खासकर घर के सदस्यों या करीबी लोगों में ज्यादा फैलता देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हंटा वायरस से संक्रमित होने के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क के 1 से 8 हफ्ते के भीतर शुरू होते हैं। आम लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द, जी मिचलाना या उल्टी होना शामिल है। ये वायरस इंसान में दो तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। पहली बीमारी है हंटा वायरस कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPCS। इसका असर ज्यादातर अमेरिका में दिखा गया है। ये बीमारी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, इससे खांसी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। और दूसरी जो बीमारी है वो है हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम। हंटा वायरस से होने वाली इस बीमारी का असर यूरोप और एशिया में देखा गया है। इसमें नुकसान गुर्दे को पहुंचता है और ब्लड प्रेशर लो होता है, खून बहने की समस्याएं होती हैं, कई बार तो गुर्दे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। अब तक इस बीमारी का पूरी तरह से कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसके लक्षणों का इलाज किया जाता है। इसमें मरीज की सांसों, दिल और गुर्दे से जुड़ी समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर मरीज को सहायता दी जाती है। जब बीमारी फैल रही हो या मामले संदिग्ध हो तो मरीजों को फौरन पहचानना और उन्हें आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग जरूरी है और सामान्य बचाव के उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हंटा वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इससे सावधान रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमण से बचने के लिए चूहों की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने को सुरक्षित तरीके से ढक कर रखना है और इसके अलावा गंदगी से बचना एक बहुत जरूरी उपाय है। भारत में अलग अलग समूह के लोगों के शरीर में हंटा वायरस एंटीबॉडी होने की जांच की गई है। इस जांच में तकरीबन 38 नमूनों में से 28 में हंटा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। इससे ये साबित होता है कि भारत में भी हंटा वायरस मौजूद है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और अब चलते चलते साइबर क्राइम की एक नई घटना और उससे जुड़ी सावधानियों की बातें। बेंगलोर में एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर शादी का एक कार्ड आया। उसने वो कार्ड खोला और उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। दरअसल उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, उसको लगा कि ये शादी का कार्ड है। वहां एक फूलों से सजी हुई तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन वो फाइल कोई इमेज फाइल नहीं थी, बल्कि वो फाइल .apk फाइल थी जो किसी अनजान नंबर से आई थी और देखने में ये लग रहा था कि वो शादी का कार्ड है। दरअसल स्कैमर्स अक्सर लोगों की तकनीकी कमियों का ही फायदा उठाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को फोन सुरक्षा के बेसिक रूल्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई, जब कभी भी आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का कोई मैसेज आए, खासतौर पर वो मैसेज ग्राफिक हो, तो चेक करना चाहिए कोई भी फाइल जिसमें तस्वीर होती है वो फाइल APK नहीं हो सकती। वो फाइल हमेशा जो .jpg फाइल होगी। APK फाइल का मतलब ही है कि आपके मोबाइल में कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर क्राइम से बचें। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

पिछले हफ्तों में आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है, लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चने होती हैं, लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहाँ जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था, सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु के

0: मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था, बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे ताल्लुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था, सच कह रही है बिंदु? बोलना
1: दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी सस्मणि हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने

उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था लेकिन डर के मारे बिंदु

से ही मेरे पास रहे, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहाँ से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है, मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम। हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। हाँ, इस बात का क्या जवाब होता। सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया, कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

0: सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में।
1: सुनो कहानी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।
1: विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास, जनगणना में पहली पारी आपका घर आवा।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं, मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। अब आपको सुनवा रहे हैं 80 फिल्म का गाना, मोहित चौहान और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल, रोचक कोहली का संगीत।

असी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहित चौहान, परंपरा टंडन और साथियों की आवाजों में कुमार के बोलते रोचक कोहली का संगीत था। फिल्म है बाजीराव मस्तानी, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के स्वर हैं। गीत और संगीत सिद्धार्थ गरिमा के।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल हैं, फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और

0: मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय

0: की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला

0: वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना सचिन देवबर्मन का संगीत।

अदालत फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत था।

0: हम दोनों फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा,

0: झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
1: वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
0: मजेदार नहीं, असरदार।
2: के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज घायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए

ये विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव तेज चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था

राजी, राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार
2: मतलब कितना स्ट्रेस, और ये सारा स्ट्रेस चेहरे पर तुरंत दिखाई देता है, पिंपल्स।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: कन्या विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक विको वज्रदंती। विको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: विको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर, कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
3: विको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: मजेदार नहीं, असरदार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: मेरे दिल में जरा सी।
1: आज छाए गीत का सफर बस यहीं तक। स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या असर कम प्रॉब्लम्स पर. इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी. मजा नहीं असर. अब पेस्ट है पिक्चर का टिकट थोड़ी.
1: बीको वज्रदंती इंडिया का गम एक्सपर्ट.
0: मजेदार नहीं असरदार.

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रात।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

0: की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of